0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण

आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था नेशनल डिजिटल टूरिज्म

0: एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद ए आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to make sure to set aside time for the census. Recalling the appeal from yesterday's Man Ki Baat address, Mr. Modi said, participating in the census is a national duty for all citizens. He added that the participation helps in creating an accurate picture of the country's future. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities and future agenda. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh met with a bipartisan delegation from the United States House of Representatives, led by Representative Brian Mast, Chairman of the House Foreign Affairs Committee. Defence Ministry said the discussion centred around the evolving India-US Comprehensive Global Strategic Partnership, with special emphasis on defence, industrial and technological cooperation. The United Forum of Bank Unions, UFBU, has announced that the proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the All India Bank Employees Association said this decision was taken after a meeting held between the IBA and the UFBU, the umbrella body of seven bank unions, last night, on the issues related to the strike. Earlier, a three-day nationwide strike was called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in the public sector banks from the 28th to the 30th of September. They had called a strike in support of two principal demands, implementation of five-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive scheme. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said, "With indomitable courage and valour, Bhagat Singh infused new energy into the freedom movement." The Prime Minister added that Bhagat Singh's spirit of sacrificing everything for the honour of the nation is a symbol of the courage and resolve of India's youth. In Uttarakhand, the Char Dham Yatra has resumed after improvement in weather conditions today. Garhwal Commissioner Anand Swaroop said necessary directions have been issued to the concerned district magistrates. The Char Dham Yatra had been suspended on the afternoon of

पर ढेर सारी जानकारियाँ और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही इंटर चैनल यानी कि 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो सखी कल्पना के साथ। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस प्रेरक विचार के साथ। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। ये विचार है महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के, एक ऐसा नाम जिसने देश की आजादी के लिए अपना जीवन हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। उनकी निर्भीकता, विचार और देश प्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। आज उनकी जयंती भी है तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज जयंती है आवाज की दुनिया की जादूगरनी स्वर साम्राज्ञी कोकिला लता मंगेशकर की। उनकी आवाज सिर्फ गीत नहीं, भावनाओं की एक पूरी दुनिया थी। उनकी सुरीली आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रेम, विरह, खुशी और देशभक्ति के रंगों से जोड़ा। उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो लता जी की जयंती पर आज हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप अभी सुन रहे थे किनारा फिल्म से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में। और आइए अब बात करते हैं कि स्वच्छता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा नाम हमेशा जीवित रहता है और हम याद किए जाते हैं। तो स्वच्छ रहें, सुंदर बने, अपना देश महान, स्वच्छता ही सेवा बने जन जन का अभियान। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सबकी रोजमर्रा की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए इस अभियान से जुड़े रहकर अपने हिस्से की जो साफ सफाई है वो हमें भी करनी चाहिए, और साथ ही जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी हमें समय समय पर जागरूक करते रहना है। और साथियों, आज के दिन यानी 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस भी मनाया जाता है, जो घर के किसी पालतू पशु या किसी संक्रमित जानवर के काटने पर लापरवाही करने से ये समस्या जो है वो हो जाती है। तो इससे आपको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोएं और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। और साथ ही आपको करना क्या है कि वही सलाह लेने के बाद आपको टीकाकरण भी करवाना है, क्योंकि जो जागरूकता है वही रैबीज से बचाव की पहली सीढ़ी है। साथ ही दोस्तों, इसी दिन सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि

सही और भरोसेमंद जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही सूचना जो है ना, वो कई बार सही फैसला लेने में मदद करती है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूबसूरत सा जो मौसम है उसका आनंद लेते रहें, खूबसूरत से जीवन का आनंद लेते रहें और साथ में गुनगुनाते रहें ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मेला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। दोस्तों देखिए, पितृ पक्ष आरंभ हो गए हैं और

श्राद्ध नाम सुनते ही मन में तर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि श्राद्ध सिर्फ कर्मकांड है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल श्राद्ध का एक गहरा अर्थ है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना, जिन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की नींव रखी। उन्हें याद करने का ये अवसर है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद हम अपने बुजुर्गों की कही बातें भी भूल जाते हैं। श्राद्ध हमें ठहर कर ये सोचने का मौका देता है कि हम अपने पूर्वजों से क्या लेकर आए और आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं। इसलिए श्राद्ध केवल किसी एक दिन का कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और कृतज्ञ होना सीखने की परंपरा भी है। और शायद सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अपने पूर्वजों को याद करने के साथ उनके अच्छे संस्कारों को अपने व्यवहार और जीवन में भी हम जीवित रखें, साथ ही साथ उन्हें भावी पीढ़ी तक भी पहुंचाते रहें। और वो जहां भी रहें, हमारे पूर्वज जहां भी हैं, उन्हें हम ये महसूस कराते रहें कि भाई तुमसे दूर रह के भी हमें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार याद आता है, हमें तुम्हारी याद आती है।

से दूर रह के। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे दोस्तों, अदालत फिल्म से। और देखिए, कुछ लोगों से दूर रह के तो हमें पता चलता ही है कि भाई वो हमारे लिए कितने खास हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ रह के, उनके पास रह के भी हमें ये पता चलता है कि भाई वो हमारे लिए कितने खास हैं। तो चलिए आपको इसी बात पे एक कविता सुनाती हूँ कि मैंने देखा अपनी माँ को, चाची को सुबह सवेरे

चुपचाप उठती हुई धूप दीप से घर को महकाती हुई, रसोई से उठती तरह तरह की महक और अपने हाथों के जायके से सबकी थालियों में प्यार परोसती हुई। न कोई इत्र, न ज्यादा साज श्रृंगार, बस अपनी सादगी में मुस्कुराती हुई। लेकिन महसूस किया, आंका जाता है उन्हें अक्सर कामकाजी स्त्रियों से कम। जबकि वो एक दिन भी थक कर बैठ जाएं, तो थम जाता है पूरे घर का जीवन। ये सब देखकर मैं मुस्कुराई और एक बात मुझे समझ आई कि वैसे तो सभी स्त्रियां अपने आप में बेहतरीन हैं और खास हैं, लेकिन घर संभालती हुई स्त्रियां भी बहुत अलग होती हैं और उनमें भी कुछ बात है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ना तो किसी को कम आंकना है और ना ही किसी को ज्यादा आंकना है, क्योंकि हर पीढ़ी की जो महिलाएं हैं वो अपनी अपनी पीढ़ी के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हैं, चाहे वो बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाएं हों या फिर घर पर रहकर परिवार संभालने वाली महिलाएं।

दादाओं पिया का घर फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और देखिए जो सितंबर माह है उसको पोषण का महीना भी कहा जाता है और साथ ही कुपोषण से जो लड़ाई है वो सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। पोषण की कुछ प्रेरक कहानियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कही हैं, जो इसी सोच को मजबूत कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही कहानियों में पहली कहानी है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का हर घर मुनगा अभियान लोगों को पोषक मुनगा यानी कि मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं मिजोरम में लोगों ने मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल का अभियान शुरू किया है, जो वहां की तलो मुड़यना यानी निस्वार्थ सेवा की परंपरा से जुड़ा है। और तकनीक भी इस लड़ाई में साथी बन रही है। पोषण ट्रैकर के जरिए आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनकी बेहतर देखभाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरात में भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजन की प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके माध्यम से सस्ता और पौष्टिक भोजन हर घर हर थाली तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी शिक्षक, आंगनबाड़ी केंद्र के लोग और माता पिता भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यानी कि संदेश जो है वो बहुत साफ है कि भाई कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो थाली से शुरू होती है और समाज की साझी भागीदारी से भी। तो आइए पोषण को सिर्फ एक महीने का अभियान नहीं बल्कि हर घर की रोजमर्रा की आदत बनाएं, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो कोई भी खराब मौसम, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे हवाएं कितनी भी ठंडी क्यों ना चल रही हों।

श्रोताओं, हाथी मेरे साथी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और देखिए, स्वास्थ्य की बात चल रही है, पोषण का जिक्र हुआ है, तो एक बात आपसे पूछती हूँ कि भाई ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सर्दी जुकाम वायरल बुखार या गले में खराश हुई तो एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए? अगर हाँ तो जरा सा रुकिए, ठहरिए ठहरिए, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक जो है वो हर बीमारी की दवा नहीं है। ये दवाएं खास तौर पर बैक्टीरिया से होने वाले कुछ जो संक्रमण हैं उनके इलाज के लिए उपयोगी होती हैं। वायरल संक्रमण जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक आमतौर पर काम नहीं करती। बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना या बीच में ही दवा छोड़ देना नुकसानदेह हो सकता है। इससे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं जिन पर जो दवाइयां है ना वो असर करना बंद कर देती हैं। इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए हर बीमारी में खुद से एंटीबायोटिक लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें और जितनी अवधि तथा जितनी मात्रा में आपको बताई जाए ना उतनी ही दवा लें। याद रखिए, सही बीमारी के लिए सही दवा ही समझदारी है। तो इतनी अच्छी जानकारी के बाद चलिए आपको सुनाती हूँ मैं चुप रहूंगी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा।

आपकी नजर में समृद्धि क्या है? क्या सिर्फ बड़ा घर, महंगी गाड़ी और बैंक बैलेंस का नाम है? तो जरा रुकिए और सोचिए, अगर घर बड़ा है लेकिन उसमें साथ बैठकर बात करने का समय नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य और सुकून नहीं है, तो क्या इसे पूरी समृद्धि कहेंगे? दरअसल समृद्धि का सच्चा मापदंड हमारी चीजों की संख्या नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता है। जहाँ परिवार में अपनापन हो, शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, जरूरतमंद के लिए मदद का हाथ हो और अपनी मेहनत से कमाई रोटी में संतोष हो, वहीं असली समृद्धि है। क्योंकि पैसा सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन विश्वास, रिश्ते, मान सम्मान और मन का जो सुकून है ना, वो कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए कभी जो आपकी समृद्धि है उसे गिने तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि ये भी देखिए कि आपके पास अपने कितने लोग हैं जिन्हें आपके व्यवहार से, आपकी बातों से और आपकी खुशी में खुशी मिलती है। क्योंकि असली दौलत तो यही है। और देखो ना, किसी ने कहा है कि भाई, तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरी बातें सैर करेंगी सूरज चांद सितारों तक। तो कहने की बात यह है कि भाई, अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि भाई, अगर कोई आपसे मिले तो आपसे मिलके बस वो एक यही बात कहे,

श्रोताओं, परिंदा फिल्म से अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज में। और सुनिएगा कि भाई हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है। बात कर रही हूँ अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की, कि हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है, आगे बढ़ते कदमों में पायल की छनक भी पसंद है, माथे पर पड़ती शिकन के बीच बिंदी मुझे बहुत भाती है और आंचल पसंद है, आंखों में बड़े बड़े सपनों के साथ ही मुझे काजल पसंद है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ठहरना पसंद है, खुद को देखना महसूस करना और संवरना पसंद है। अब संवरने की बात दोस्तों इसलिए कि भाई जब हम संवरती हैं तो हम कॉन्फिडेंस में रहती हैं, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही साथ होता क्या है कि हमारे व्यक्तित्व में भी चार चांद लग जाते हैं।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। और देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो आजकल थोड़ा सा बदला बदला है, तो आप भी अपना और अपने घर के बच्चों का, बुजुर्गों का रखिए खास ध्यान। और साथ ही आइए अब सुनते हैं घर आंगन कार्यक्रम की आज की ये अंतिम प्रस्तुति, ये प्यारा सा गीत दो रास्ते फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। और इस गीत के साथ ही, इस गीत को आप सुनते रहिए और इसके साथ ही मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना त्रिवेदी को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

अपने अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक

सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला

68 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: after improvement in weather conditions today. Garhwal Commissioner Anand Swarup said necessary directions have been issued to the concerned district magistrates. The Chardham Yatra had been suspended from the afternoon of the day before yesterday until yesterday in view of the weather forecast and the safety of pilgrims. At the 2026 Asian Games in Japan, India's Isha Singh won the silver medal today in the women's 25-meter pistol individual competition. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex plunged 945 points to 72,952, while the Nifty tanked 299 points to 22,842 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10:16 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
3: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कभी कभी सिनेमा की कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती है। कुछ फिल्में प्रेम की कहानी कहती हैं, कुछ संघर्ष की, कुछ ऐसी होती हैं जिनका केंद्र बन जाता है एक ऐसा रिश्ता जिसके आगे दुनिया की हर दौलत छोटी पड़ जाती है, मां और बच्चे का रिश्ता। जब हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ इमोशनल और फैमिली ड्रामा फिल्मों की बात होती है तो 1966 में आई एक फिल्म का नाम सबसे ऊपर आता है, एक मां के त्याग, दर्द और निस्वार्थ प्रेम की ये वो अमर कहानी जिसमें सिनेमा घरों में हर दर्शकों की आंखें नम कर दी थी। तो चलिए आज हम इस फिल्म के हर पहलू को करीब से जानते हैं, इसके गीत सुनते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमेशा की तरह। क्या करना है आपको? एक छोटा सा संदेश लिख के भेजना है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com और आपको बता दूं कि आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूं।

आज हम चुनकर लेकर आए हैं 1966 में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन दिल को छू लेने वाली फिल्म ममता, जिसका निर्देशन किया था असित सेन ने और निर्माता थे चारू चित्र। कहानी प्रसिद्ध लेखक निहार रंजन गुप्ता की थी और संवाद कृष्णचंद्र ने लिखे थे। फिल्म में सुचित्रा सेन ने दोहरी भूमिका यानी कि डबल रोल निभाया था, देवयानी और पन्नाबाई और सुपर्णा। उनके साथ अशोक कुमार ने मोनिश रॉय और धर्मेंद्र ने बैरिस्टर इंद्रनील का किरदार निभाया था। बंगाली सिनेमा से बॉलीवुड का सफर, ये एक खूबी थी इस फिल्म में नजर आती है। ममता प्रसिद्ध बंगाली फिल्म उत्तर फाल्गुनी, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, इसकी हिंदी रीमेक थी। बंगाली फिल्म का निर्देशन भी महान निर्देशक असित सेन ने ही किया था और जब उन्होंने इसे हिंदी में बनाया तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। ममता 1966 में रिलीज हुई थी और उस वक्त की ये सुपरहिट फिल्म रही थी।

फिल्म ममता, इस फिल्म का जो असली दिल है जानती है वो कौन था? सुचित्रा सेन। उन्होंने फिल्म में माँ देवयानी और पन्नाबाई का और वहीं बेटी सुपर्णा की दोहरी भूमिका निभाई थी। एक वैश्य के घर में फंसी माँ जो अपनी बेटी को एक सम्राट समाज में बड़ा करने के लिए अपनी पहचान छुपा लेती है। सुचित्रा सेन की अदाकारी इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। उनके साथ हीरो की भूमिका में थे दृश्य हैंडसम से धर्मेंद्र, जो कि बैरिस्टर मनीष रॉय के किरदार में थे, वहीं अशोक कुमार जो कि जासूसी एक वकील की भूमिका उन्होंने निभाई थी। धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। एक और देवयानी जिसके जीवन में संघर्ष है, त्याग है और अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम है। दूसरी ओर सुपर्णा, नई पीढ़ी की युवती जिसके जीवन की परिस्थितियां उसकी माँ के अतीत से जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा सेन ने इन दोनों चरित्र जो कैरेक्टर थे इनके बीच भावनात्मक अंतर को अपने अभिनय से उभारा था। फिल्म की कहानी भी इसी वजह से और अधिक प्रभावशाली बनती है। ममता को अगर इसका संगीत ना मिलता तो शायद ये फिल्म अधूरी रह जाती। संगीतकार रोशन जी का संगीत और मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, रहे ना रहे हम महका करेंगे, आज भी हर किसी के दिल को छू जाते हैं। लता जी और मोहम्मद रफी साहब का गाना छुपा लो यूं दिल में प्यार अपना, ये गजल और सुगम संगीत इन दोनों का बेजोड़ संगम है। वहीं हेमंत कुमार की आवाज में ही छुपा लो यूं दिल को प्यार अपना जो उन्होंने गाया एक सोलो वर्जन, वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। चलिए सुनते हैं रहते थे कभी जिनके दिल में, लता जी की आवाज में।

जी हाँ, ममता की खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी में नहीं बल्कि इसे संगीत में भी है। संगीतकार रोशन ने फिल्म के भावों को बहुत खूबसूरती से सुरों में ढाला और मजरू सुल्तानपुरी की शायरी ने उन भावों को शब्द दिए।

सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आज आपके लिए चुन कर लेकर आई हूं 1966 की सुपरहिट फिल्म ममता। ये फिल्म 1966 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इसे 14वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में कई नॉमिनेशंस मिले थे जिसमें सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी मिला था।

फिल्म का सबसे बड़ा भाव था एक माँ का त्याग। देवयानी की जिंदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक अपने सुख, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को पीछे रख सकती है। इसीलिए ममता का शीर्षक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये सामाजिक परिस्थितियों, स्त्री के संघर्ष, रिश्तों की मजबूरियों और माँ के त्याग की कहानी है। तो ये थी फिल्म ममता। लेकिन ममता की कहानी शायद यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता है, जब तक प्रेम में त्याग है और जब तक पुरानी फिल्मों के गीत दिल को छूते रहेंगे, तब तक ममता जैसी फिल्में हमारे बीच जीवित रहेंगी। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और वक्त हो रहा है कि हम उन संदेशों को भी शामिल कर लें। लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि आज स्वर्ण कोकिला लता जी की का जन्मदिन है और इस फिल्म में भी उन्हीं के गाए गीत हैं। उनके ऊपर एक खास कार्यक्रम भी आप सुनेंगे एक ही कलाकार में 2:30 पर। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में और उसके बाद आपके संदेश आप तक पहुंचाएंगे।

आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं फरुख नगर हरियाणा से। जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिलीप भल्ला, शिवम वाजपेयी, सुरेश शर्मा, धर्मवीर जी, राजेंद्र शर्मा जी। अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है वो तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संदेश है हमारे पास सैयद मसरूर शाइना हसन सहारनपुर से ये जुड़े हुए हैं, और सुरेश गंगनेजा पूनम जी ये जलालाबाद वेस्ट से हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भापसा जी, प्रमिला जी के साथ वीरंगाव जंक्शन से गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी सौरभ जी हमारे साथ हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। सुनील पाठक जी अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, कमल पाठक गाविया मल्होत्रा के साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार देव, डोनी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से आया है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमें सुन रहे हैं। समरपुर काकेट से फागुन राम यादव, ज्योति ओजस्वी हमारे साथ हैं। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह, राजस्वी, जस्सी, सीता और गीता है। वटिंगेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन उषा, मोनचिल्लू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं। पोचियल कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत, परवीन शेनवास, सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य से जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं, और ये संदेश ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से आया हुआ है। भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल और प्रियल। अगला संदेश किसका है? छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा हमें सुन रहे हैं। सुधाकर राजे, प्रशांत जी और पूरा परिवार, देशमुख परिवार जो है वो हमारे साथ सुंदरनगर जालना शहर से जुड़ा हुआ है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलत और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। और ये संदेश गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी का है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमें सुन रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज और फरहीन जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास, कुछ और भी संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। फिलहाल ये एक और खूबसूरत सा गीत है लता जी की आवाज में।

यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद जी हमारे साथ हैं, प्रवीण कुमार शर्मा सूर्यनगर गाजियाबाद से हमें सुन रहे हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल जी हमारे साथ हैं, नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस मोहनकर निर्वला विशाल जी हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप प्रेम गोप कपिल जी पश्चिम सिंहपुर चाईबासा झारखंड से हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश गुरमीत सिंह मीता जी का साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से आया हुआ है और ये संदेश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन कौशल्य और हेमलता जी का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफर में हम सफर बनने के लिए। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज स्वर कोकिला लता जी के गीत और उनके बारे में जानकारी देने के लिए आपके साथ हमारी अगली जो आरजी है वो रहेंगी और 3:00 प्रोग्राम रहेगा मैटिनी मेलेडी, जिसमें मैं आपके साथ रहूंगी। तो तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोता, हम आपको बता दें कि आज मैथिली मेलोडीज में आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, तो तैयार रहिएगा, 3 बजे फिर मुलाकात होगी। तो विजेता जी आपके साथ जुड़ेंगी 2:30 पर। फिलहाल वक्त हो गया है, आप कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप जुड़े हुए हैं।
1: ओके,
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी यूपीआई लैन देन ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लाउण दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउण तो इनकार कर दिता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा विच विश्व आगुआं ने सिख्या हुनर तकनालोजी अते रोजगार राही आलमी खुशहाली लियाउण लई वध रही नौजवान आबादी की समर्था उत्ते जोर दिता है। केंद्रीय किरत ते रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश विच 100 करोड़ तो वध लोगों नूं समाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जन्म वरेगंढ मना रहा है। एशियाई खेडा च भारत की ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले चांदी का तमगा जितया। भारत की मर्दां की क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल च पहुंची है। हुण खबरां विस्थार दे नाल। सुप्रीम कोर्ट ने अज 2,000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी यूपीआई लैन देन उत्ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लाउण दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउण तो इनकार कर दिता है। यह फीस अगले महीने की 15 तरीक तो लागू होनी है। 2,000 रुपए तो वध दे यूपीआई भुगतानों उत्ते एमडीआर लाउण दे फैसले नूं चुनौती देने वाली पटीशन उत्ते सुनवाई करदिआं अदालत ने कहा कि यह मामला कानूनी नालों वधेरे तकनीकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र अते होर धिरां नूं 4 हफ्तिआं दे अंदर जवाबी हलफनामा दाखल करन दे निर्देश दिते ने। भारत अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मना रहा है। 28 अते 19 सितंबर 2016 की रात नूं फौज ने कंट्रोल रेखा दे पार दहशतगर्दां दे टिकाणिआं खिलाफ निशानाबद्ध कार्रवाईआं कीतीआं सन। यह कार्रवाई 18 सितंबर नूं उड़ी दहशतगर्दी हमले तों बाद कीती गई सी, जिस विच 18 भारती जवान शहीद हो गए सन। इस कार्रवाई ने दहशतगर्दी खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति च तब्दीली की निशानदेही की। इस तों बाद 2019 च बालाकोट अते 2025 च आपरेशन सिंदूर विच पाकिस्तान विरुद्ध कार्रवाईआं कीतीआं गईआं। कल आकाशवाणी उत्ते प्रसारित अपने मन की बात प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 दे सर्जिकल स्ट्राइक नूं अहम प्राप्ति दस्या। उन्हां कहा कि पिछले दहाके च दहशतगर्दी विरोधी भारत का नजरिया बदल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी हमलों के लंबे समय बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत की फैसलाकुन कार्रवाई सी। उन्होंने 2008 विच दिल्ली च होए लड़ीवार बंब धमाकों अते 26/11 दे मुंबई दहशतगर्दी हमलों नूं याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज देशवासियों नूं मरदमशुमारी लई समां कढ़न दी अपील कीती है। कल दे मन की बात प्रोग्राम दौरान दित्ते गए सद्दे नूं याद करदिआं श्री मोदी ने कहा कि मरदमशुमारी च हिस्सा लैणा सारे नागरिकां दा राष्ट्रीय फर्ज है। उन्हां कहा कि यह हिस्सेदारी देश दे भविख दी सही तस्वीर पेश करदी है। अज तों शुरू होण वाली तजवीज़शुदा 3 दिना देशव्यापी बैंक हड़ताल रद्द कर दित्ती गई है। आल इंडिया बैंक इंपलॉयज एसोसीएशन ने इस दी पुष्टि कीती है। यह फैसला इंडियन बैंक्स एसोसीएशन नाल होए समझौते तो बाद लिया गया है। इसने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा है कि हड़ताल रद्द करने का फैसला कल रात इंडियन बैंक्स एसोसीएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनज विचकार हड़ताल नाल संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हुई मीटिंग तो बाद लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की 11वीं सालाना मीटिंग और AIIB निवेशक संवाद 2026 च हिस्सा लैण लई कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए ने। दुनिया भर के मैंबर वफद नीति घाड़े और होर

0: ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਰਾਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ MDR ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमन अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने UPI लेनदेन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट की गिरावट आई है। निफ्टी भी 299 पॉइंट नीचे आ गया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट यानी बाज UPI लेनदेन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन चार्जेस का इतलाक अगले महीने की 15 तारीख से होना है। 2000 रुपए से ज्यादा की UPI अदायगी पर MDR नाफिज किए जाने को चैलेंज करने से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मामला कानूनी एतबार से कम लेकिन तकनीकी लिहाज से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दीगर मुतालिका फरीकों को हिदायत दी है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने ऐलान किया है कि बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। भारतीय बैंकों की एसोसिएशन IBA के साथ समझौता होने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन एसोसिएशन ने कहा है कि यह फैसला कल रात भारतीय बैंकों की एसोसिएशन और 7 बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम के दरमियान हड़ताल से मुतालिक मामलात पर मीटिंग के बाद किया गया। इससे कबल बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम और सरकारी मिल्कियत के बैंकों की बाज दीगर यूनियनों और अंजुमनों ने 28 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 3 दिन की हड़ताल का नारा दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिससे दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम हुई थी। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की थीं। उरी में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बराह रास्त और फैसलाकुन फौजी कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। उरी के हमले में 19 भारतीय फौजियों की जान गई थी। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी संगमील करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कंट्रोल लाइन के उस पार कार्रवाई अंजाम देने में भारतीय फौज का रोल उजागर हुआ।
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।
1: मेहनत और रोजगार के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया

के यूपीआई लेन देन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजब्बजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देशभर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद

0: बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
2: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
2: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
2: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
6: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला।
5: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
7: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
5: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
8: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 100

0: एक करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि एआई मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
2: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुशनसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी,
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
2: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों की तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक

0: केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
1: जी,
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
1: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
0: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
0: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
1: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
3: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
2: पुकार कर

0: वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
1: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
0: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
2: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
0: उसने सोचा,
2: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
0: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
3: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
4: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक?
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा?
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
2: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं जा रहा है, क्या
3: मसला है? ठीक है, चलो भगवान से
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई के
6: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
7: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
7: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि

0: हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
1: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
2: कैसे से बचा?
0: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
3: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
4: अरे वो हमारा गौरव है,
5: हमारा गौरव है।
3: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी।
6: मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
0: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
5: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
6: जब तक सूरज चांद रहेगा, धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
7: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
8: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
7: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
8: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
7: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
8: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
7: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
9: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
10: जय हिंद धन सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
9: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
10: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
9: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
10: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम

0: काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
1: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने ना पाए।
0: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।

0: 20 अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
1: साथियों आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
2: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
3: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो, मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है कि वो जल्दी से जल्दी सहायता दे, पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो हेलो, श्री जापान से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
6: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे।
4: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर।
8: जय मां काली, आयो गौर काली।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, माँ, माँ, माँ, देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो।

0: चिट्ठी ला दिखा तो।
1: हाँ, अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
2: जिंदा है। अरे बहुत खुशी
3: था बेटा।
2: जिंदा है धन सिंह थापा।
4: सरकारी स्तर पर वार्ता के फल स्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परम वीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना,
6: अर्शद,
5: सौम्या,
6: प्रसून
5: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
6: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

सामिन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सामीन आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे कहकशा प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के तहत सुनिएगा फिल्म जिंदगी की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है अनवर अहमद ने। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामईन, था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का, जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नेपाल में लगातार बारिश होने के तनाजुर में सैलाब आने और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात में 21 अफराद की मौत हो गई जबकि 5 लापता बताए गए हैं। अमरीका ने मुश्तबा दहशतगर्दाना हमले के मामले पर गिरफ्तारियों के तनाजुर में बरतानिया में अमरीकी शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत

लता मंगेशकर ने अपने साथ साथ दीगर गुलकारों के साथ भी नगमे गाए, और वो नगमे गाए जिन्होंने उनको अमर कर दिया। कहते हैं आवाज खामोश हो जाती है लेकिन सुर और ताल हमेशा जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसे ही नगमे हम आपको

सभी निशर्ग के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे लता मंगेशकर के साथ गाए दीगर गुलकारों के कुछ नगमे। आज लता मंगेशकर का यौम पैदाइश है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनिए जिंदगी फिल्म की कहानी और नगमे जिन्हें तरतीब दिया है जनाब अनवर अहमद ने।

बीना यानी अदाकारा विजयंती माला एक इज्जतदार खानदान की लड़की है, मगर हालात में बीना और उसकी मां यानी अदाकारा लीला चिटनिस को गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। यहां तक के नाजों से पली और आराम और आसाइश से भरपूर जिंदगी गुजारने वाली बीना को एक मामूली सी नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। बहुत कोशिश के बाद बीना को एक ड्रामा कंपनी में एक्ट्रेस की नौकरी मिल जाती है। मां उस नौकरी के खिलाफ है, मगर बीना अपनी मां को समझा देती है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि एक्ट्रेस की नौकरी मंजूर कर ले, और यकीन दिलाती है कि वो खानदान की इज्जत पर जर्रा बराबर भी आंच नहीं आने देगी। मजबूर बेकस मां अपने चश्म चराग को जमाने की बेरहम आंधियों से मुकाबला करने के लिए जाते हुए देखती है और तकदीर के फैसले के आगे सर निगू कर देती है। गोपाल बाबू यानी अदाकार राजकुमार ड्रामा कंपनी के डायरेक्टर हैं और उन्हें बीना से बहुत उम्मीदें हैं। वो बीना का हौसला बढ़ाते हैं और उसे कामयाबी का यकीन दिलाते हैं। बीना बेहद मेहनत और लगन से अपने काम में मसरूफ हो जाती है और फिर पहला ड्रामा मंजर आम पर आता है, जिससे बीना की तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं।

ये ड्रामा बेहद कामयाब होता है और बीना एक कामयाब एक्ट्रेस साबित हो जाती है। गोपाल बाबू गर्मजोशी से बीना को मुबारकबाद देते हैं। कंपनी का मालिक रतन लाल एक औबाश किस्म का आदमी है जो बीना की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, मगर बीना उसके साथ

जग्गू और चमेली एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मगर चमेली का बाप नंबरदार यानी अदाकार धूमल उनके दरमियान हायल है। नंबरदार चमेली की शादी उससे करना चाहता है जो बहुत सा मालो जर उसको देगा, मगर जग्गू के पास कुछ भी नहीं है। एक रोज जग्गू नंबरदार की पोशीदा दौलत का राज हासिल कर लेता है और तमाम जेवर और दौलत चुरा लेता है। वही तमाम मालो जर वो नंबरदार को दिखाता है और नंबरदार चमेली की शादी जग्गू से कराने के लिए तैयार हो जाता है। उधर राजन भी बीना की मोहब्बत अपने दिल में महसूस करने लगा है। वो बीना से मिलना चाहता है मगर मुलाकात का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। अपनी मजबूरी वो उसके सामने रखता है और हनी बीना के घर जाकर उसे एक बाग में ले आता है जहां राजन पहले ही से मौजूद है। दोनों हनी की इस शरारत से बेहद महजूज होते हैं और इस मौके को गनीमत जानकर राजन बीना से अपने प्यार का इजहार कर देता है।

बीना अपने दूसरे ड्रामे की तैयारी में मसरूफ हो जाती है। गोपाल बाबू भी बीना से इश्क करने लगते हैं, मगर बीना के रूबरू अपना हाले दिल बयान नहीं कर पाते। राजन राय बहादुर साहब से इजाजत मांगता है कि वो बीना से शादी करे, मगर राय बहादुर साहब एक एक्ट्रेस को अपने आला खानदान की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। राजन के जिद करने पर वो बीना से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर इससे पहले वो अपना हुलिया बदलकर बीना का ड्रामा देखने जाते हैं ताकि उसके बारे में कोई राय कायम कर सके।

ड्रामे के बाद राजन बीना को मुबारकबाद देने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाता है। तभी गोपाल बाबू भी आते हैं और उन पर यह राज अफशा होता है कि बीना राजन से प्यार करती है। गोपाल बाबू वापस चले जाते हैं और अपने दिल पर पत्थर रखकर बीना को भूलने का कष्ट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से बीना को कोई भी दुख पहुंचे। राजन बीना को अपने घर मधु करता है ताकि वो राय बहादुर साहब से मुलाकात कर सके। बीना गोपाल बाबू का आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे में जाती है और तभी राय बहादुर साहब उन दोनों को एक साथ देखकर उनसे मशकूक हो जाते हैं। बीना राय बहादुर साहब से मिलने आती है। राय बहादुर साहब उससे दरख्वास्त करते हैं कि वो जितनी चाहे दौलत ले ले, मगर इस खानदान को बर्बाद ना करे, क्योंकि एक एक्ट्रेस का उस घर की बहू बनना उनकी नजर में बहुत गिरी हुई बात है। बीना खामोशी से वापस चली जाती है और उसके दिल का दर्द स्टेज पर गीतों के जरिए मंजरे आम पर आ जाता है।

राजन को जब इसका इल्म होता है तो वो राय बहादुर साहब की मर्जी के खिलाफ बीना से शादी करने का ऐलान कर देता है। अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे राय बहादुर साहब सर निगुं हो जाते हैं, मगर शर्त रखते हैं कि बीना गोपाल बाबू से कभी नहीं मिलेगी। राजन इस शर्त के खिलाफ है, मगर बीना शर्त मान लेती है और ये दोनों शादी के मुकद्दस रिश्ते में बंध जाते हैं।

गोपाल बाबू शादी की मुबारकबाद देने आते हैं तो बीना उनसे दरखास्त करती है कि अगर वो उसे खुश देखना चाहते हैं तो उससे कभी मिलने की कोशिश न करें। गोपाल बाबू को बेहद तकलीफ होती है मगर वो बीना से कभी ना मिलने का कष्ट कर लेते हैं। एक रोज रतनलाल गोपाल बाबू से बीना के मुतालिक नाजेबा गुफ्तगु करता है तो गोपाल बाबू उसे जान से मार देने की धमकी दे देते हैं। इस झगड़े को गोपाल बाबू का एक पड़ोसी सुन लेता है। एक रात राजन और बीना गाड़ी से जा रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी का पंक्चर हो जाता है। दरअसल ये हरकत रतनलाल और बाकी की थी जो बीना को अगवा करना चाहते हैं। राजन गाड़ी मरम्मत कराने के लिए मैकेनिक की तलाश में जाता है तो बाकी के गुंडे बीना को अगवा करने की कोशिश करते हैं। बीना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और एक मकान में दाखिल हो जाती है। वो मकान इत्तेफाक से गोपाल बाबू का है। गोपाल बाबू को तमाम माजरा मालूम होता है तो वो बीना की हिम्मत बढ़ाते हैं और उन गुंडों को वहां से भागना पड़ता है। तभी शहर में फसाद बरपा हो जाता है और उस रात के लिए तमाम शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। बीना गोपाल बाबू के यहां चली जाना चाहती है मगर पुलिस उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती। मजबूरन उसे पूरी रात गोपाल बाबू के घर में ही गुजारनी पड़ती है। कर्फ्यू खुलने पर वो सुबह अपने घर वापस आ जाती है मगर रात में किसी वक्त उसका एक झुमका गोपाल बाबू के यहां गिर पड़ता है। जब उसे मालूम होता है तो वो वापस जाना चाहती है मगर फिर अपना इरादा बदल देती है। बीना के घर पहुंचने पर सब राहत की सांस लेते हैं जो तमाम रात बीना के लिए परेशान रहे। बीना मसलहतन ये नहीं बताती कि वो गोपाल बाबू के रात भर रही। उसके कहने से एक भले आदमी ने उसको सहारा दिया।

सभी मुतमईन हो जाते हैं। जिंदगी फिर मामूल पर आ जाती है और एक दिन मालूम होता है कि बीना माँ बनने वाली है। राय बहादुर साहब की हवेली खुशी से झूम उठती है। हर कोई बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार करने लगता है और खुशी के गीत हवेली को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं।

उधर रतनलाल गोपाल और बीना का दुश्मन बन जाता है। कर्फ्यू की रात बांके और रतनलाल में झगड़ा होता है तो रतनलाल का कत्ल हो जाता है। बांके मौका वारदात से फरार हो जाता है और इल्जाम आता है गोपाल बाबू पर, क्योंकि गोपाल बाबू ने रतनलाल को जान से मार देने की धमकी दी थी। गोपाल बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके घर की तलाशी में बीना का एक झुमका पुलिस को मिल जाता है। गोपाल बाबू पर कत्ल का मुकदमा चलता है। इत्तेफाक से राय बहादुर साहब उस मुकदमे की ज्यूरी के सदर हैं। अदालत में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि एक औरत के सिलसिले में रतनलाल और गोपाल बाबू में झगड़ा हुआ था और वही औरत उस कत्ल का सबब है जिसका झुमका गोपाल बाबू के घर में मिला है। गोपाल बाबू अपने बेगुनाह होने का दावा करते हैं, मगर बीना का नाम अदालत में नहीं लाते जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकती है। मुकदमे की तमाम तफसीलात अखबार में शाया हो जाती हैं और बीना को तमाम हालात का इल्म हो जाता है। वो किसी की भी परवाह किए बगैर अदालत में चली जाती है और बयान देती है कि जिस रात कत्ल हुआ उस रात वो गोपाल बाबू के घर में थी और वो बेगुनाह है। गोपाल बाबू बाइज्जत बरी हो जाते हैं, मगर बीना की तमाम खुशियां उजड़ जाती हैं। राजन इसे बीना की बेवफाई का नाम देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है और खुद को शराब के नशे में डुबो देता है।

गोपाल बाबू बांके की तलाश में लग जाते हैं ताकि वो असल हकीकत राजन को बता सके। एक रोज बांके गोपाल बाबू को मिल जाता है मगर उनकी बात मानने से इनकार करता है। उधर राय बहादुर साहब बजिद हैं कि राजन दूसरी शादी कर ले। राय बहादुर की खस्ता हालत देखकर राजन मजबूरन शादी के लिए राजी हो जाता है। राय बहादुर बीना और उसकी मां को भी शहर से चले जाने का हुक्म देते हैं। दोनों रात के अंधेरे में घर से निकलती हैं मगर अचानक दर्द की वजह से बीना बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से शेर खान यानी अदाकार जयंत उन दोनों को देख लेते हैं और अपनी हवेली में ले आते हैं। शेर खान राय बहादुर साहब के बेहद अजीज दोस्तों में से हैं मगर बीना का चेहरा ना देखने की वजह से उसे पहचान नहीं पाते। शेर खान की अहलिया दोनों की तीमारदारी करती है और बीना एक नन्हे से लड़के को जन्म देती है। वक्त गुजरता रहता है और कई महीने यूं ही गुजर जाते हैं। एक रोज शेर खान की हवेली के करीब ही राजन की कार एक हादसे का शिकार हो जाती है। हनी मदद के लिए इधर उधर दौड़ता है और बीना की बू महसूस कर लेता है। वो बीना को हादसे के मकाम पर ले आता है और बीना राजन को शेर खान की हवेली में ले आती है। राजन बच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात खुद उसके बेटे से होती है जो उससे खूब घुल मिल जाता है। राजन अक्सर अपने ही बेटे से खेलता है, खुश होता है, मगर अपने ही खून से बेखबर है।

एक रोज बीरा को भी मालूम हो जाता है कि अब तक वो जहां रह रही थी वो शेर खान की हवेली है। ये मालूम होते ही वो वहां से रवाना होना चाहती है। उसी रोज राजन की दूसरी शादी भी हो रही है। शेर खान बीना और उसकी माँ को शादी में ले जाने के लिए उनके कमरे में आता है और बीना को पहचान लेता है। जब उसे तमाम हालात का इल्म हो जाता है तो वो चराग पा होकर राजन की शादी रुकवाने के लिए दौड़ पड़ता है और राय बहादुर और राजन को सच्चाई से आगाह कराता है। तभी गोपाल बाबू बांके को पकड़ कर ले आते हैं जो पुलिस की गोली से जख्मी हो चुका है। मरने से पहले वो राय बहादुर साहब को सच्चाई बता देता है। राजन दीवानावार शेर खान की हवेली की तरफ दौड़ता है ताकि अपने गुनाहों की माफी मांगकर बीना को वापस ला सके। मगर तभी जलजला आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सब बिछड़ जाते हैं। राजन लापता हो जाता है। बीना और राय बहादुर राजन को तलाश करते फिर रहे हैं मगर उन्हें वो नहीं मिलता। इस सदमे से बीना नीम पागल सी हो जाती है। हनी भी राजन की तलाश में भटक रहा था और एक जगह राजन उसे जख्मी हालत में मिल जाता है। सब राजन को वहां से निकालते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। कुछ दिन बाद राजन सेहतयाब हो जाता है। राजन और राय बहादुर साहब बीना से माफी मांगते हैं और गोपाल बाबू से भी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और यूं एक बार फिर जिंदगी खुशियों से लबरे

रक्षा प्रोग्राम में सामने भी आप सुन रहे थे जिंदगी फिल्म की कहानी और नगमे। इसे तरतीब दिया था जनाब अनवर अहमद ने, पेश कर रहे थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के यौम पैदाइश के हवाले से उनके कुछ खसूसी नगमा। प्रोग्राम की पहली पेशकश ताजमहल फिल्म का नगमा, नगमा निगार साहिल, मौसीकार रोशन, आवाज लता मंगेशकर की।

जख्मी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मौसीकार थी बप्पी लाहिरी। और आप सुनिए लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों को फिल्म है दिल लगी। नगमा निगार समीर, मौसीकार दिलीप सेन, समीर सेन।

उसने कहा था। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में, नगमा निगार थे शैलेंद्र, मौसीकार सलील चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के यौम पैदाइश के हवाले से कुछ मुंतखब फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की अगली पेशकश खानदान फिल्म का नगमा, नगमा निगार राजेंद्र किशन, मौसीकार रवि, आवाज लता मंगेशकर।

0: रेन्यू आकाशवाणी कारगिली स्पेशल प्रोग्राम सेवा संकल्प अभियान तहत दूसरा प्रोग्राम दिंग यंतासु पखुरेना एनायदली यंदी दुनियों से छाना दी दी प्रोग्राम पेनुक नतेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इस 2020 याना शुरू बसकन दी पॉलिसी गाव नपस दे ओल्ड नती ट्रेडिशनल सिस्टम जी गाव एनु नतेस 10+2 सिस्टम पर पिन यमन न देर के अपना 3 साल डिग्री दे पुराना सिस्टम पर चेंज बसे दे रहे 5+3+3+4 सिस्टम पो शुरू बसिन छन दी एजुकेशन पॉलिसी नु डब्ल्यू सी मन मांगो बसे नती स्नल ला नता थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम पर पिन दे सिस्टम पर चेंज बसे दे रहे प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एजुकेशन ताउचाओ ताम सिगन में सपो फ्रूनी स्किल पर एनहांस बे तरीकान इस्तेमाल बसे फ्रून दोनों खास कर लोकल नती जबान हिंदुस्तानी व्यस्त पुतम जो छोटा अनुक अलग अलग जगह अलग अलग स्का दियोत छाना लोकल स्का करगिल पूरी गीत का तैनुक जंसकर लंसकर तैनुक द्रास ला शिनास का तैनुक दो चला साख ताऊ में सिस्टम पो शुरू बसिन छाना दी पॉलिसी एजुकेशनल सिस्टम पो चम से कामयाब हो चम से इम्प्लीमेंट सो चीज सो गवर्नमेंट इस गचुक चे दियो ची मकसद चे इम्प्लीमेंट बस इन देश कोला पैरा तमिफिया दी दि प्रोग्राम पेनु अचास डॉक्टर विलायत अली सीनियर फैकल्टी डाइट करगिल कुरान अस्क्यो जुसो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
1: वालेकुम सलाम
0: डॉक्टर साहब ता न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनु निपुण भारत जैन जो 5+3+3+4 जैन जो छना सिस्टम पांचवी सुपा अलग यंग तीन सौ देर अपने यंग तीसरी सुपा फ्रून ला न्यूमरेसी मैथमेटिक्स या प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम पता चाहे इंस्टीट्यूट छा ना यरंगा पहला सवाल पो स्नपा से 10+2 एजुकेशन सिस्टम पो चेंज बसे दी सिस्टम पो क्यों माउचा खाचन छे जो गवर्नमेंट ला
1: बस जो एन एच एप छाना गता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यंग गता लागू सो एजुकेशन पॉलिसी कंटेक्स यानु गता मते स्कूली करिकुलम सॉक जरबी तरीका सॉर तामी तरीका गते कंटेंट चीज इन फ्रंट ला सिलेबस यो चेन बाकी गता ओवरऑल प्री डेवलपमेंट फिंग गता ची ची बारु शेन दुनिया मा चेंज मामिक सोसिन गता पुराना सिस्टम पे चेंज सोसिन देना मेन चेंज चीच गता इज द सेंस दे 10+2 सन लगाते जरूरत पिन की 10 साल की पढ़ाई देखना 2 साल आता स्पेशलाइज सब्जेक्ट अनुगते पढ़ाई बच्चा 10+2 सिस्टम से बात दोसा चेंज कोस दी पॉलिसी सभी का चेंज सो से 5+3+3+4 सिस्टम बस इन दियानुक मेन ऑब्जेक्टिव द इनकी फ्रूनी ग्रोथ न डेवलपमेंट माइलस्टोन बेसिका दी स्टेशन जक्सिन छाना 5 साल 5+3 माने पहला 5 साली फाउंडेशनल स्टेज दर्शन 5 साल 3 साली बाल वाटिका दर्शन 2 साली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दर्शन छाना 5 साल स्नानी सिस्टम पे गति गवर्नमेंट सेटअप में आता ना थ्रू 6 साल ला पहली क्लास स्कूल सा खवा एडमिशन दाखिला बा लेकिन दसंग आता कंपलसरी सोसन की फ्रून 3 साल ला प्री स्कूल बाल वाटिके खवा एडमिशन चाचा छाना दे 3 साल पुना दे 2 साल यानी कि टोटल 5 साल पुमन क्रुशियल चीज फ्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफ या दे खोए बेसिक लाइफ स्किल्स खोए बेसिक स्किल्स उन दे टाइम पे दन जिंसु दन मना दे टाइम पे चम से फ्रो अंगते मौका ताना एक्सपोजर ताना खोए पढ़ाई का ध्यान ताना या खोआ लोप्स पी शेस पी चीज सुनियो खोआ चम से मत मौका ना एनवायरमेंट का तो प्रोवाइड बना दे सब फ्री बेस पो स्ट्रॉन्ग छिंसुक खुए स्म्यांग पो मैंने स्ट्रॉन्ग दान चिंसुक छाना स्म्यांग पो स्ट्रॉन्ग दान मैंने बाकी यों मी खुए पढ़ाई जो 3 साल का गाते बचिन देखना यहाँ 3 साल बचिन दि मिडिल स्टेज देखना आता है यहाँ 4 साल आता सेकेंडरी स्टेज बचिन दोनों आते सब्जेक्ट उन कुले कुले क्रोल इन सब्जेक्ट की डेप्थ स्टडी बेन छिन छाना दोन सा बे फिया दे सब्जेक्ट उन इंट्रोड्यूस बे फिया अलग अलग आता सब्जेक्ट पो खुआ इंट्रोड्यूस भाव ससना दे सब्जेक्ट सिल भी फिर खुए स्किल था चिक रोशन स्कूल 6 तरीका स्कूल स्पेराजर भी तरीका देखना लैंग्वेज पे मरगोस साइंस साइंस गा लैंग्वेज पे असल दे लैंग्वेज पे मास्टरी छाचा या डिस्कशन बचा खुए लाइफ स्किल कची छोटा छोटा प्रॉब्लम हल बचा खुरांग इमोशनली खो स्ट्रॉन्ग दुख से ध्यान दुख से स्कूल के दुख से सब पी कोशिश बचा क्यूरिसिटी हुए डेवलप छचिन दे क्यूरिसिटी मेंटेन जैसे खोस लोप्स पी दे ची सुन दे सोस बेसिक स्किल उनको आदि 5 साल पे लोशन छाना दे फिर पहला 5 साल देखना 3 साल छाना 3 साल लगा छिन।

0: प्रिपरेटरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज ही 3 साल पे अनु खुआ बुलिक खुए इन्वायरमेंट बारे हम पता छा चुचा पहला खुआ खुरी बेसिक स्किल्स पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बारे हम खुआ जानकारी सुन देगा 3 साल पे खुआ न्यम्बो न्यम्बो दे लैंग्वेज पे अनु खुए आस पास ही बारे हम बुलिक सागर चा चाहे दो सब्जेक्ट ची इंट्रोड्यूस बचा देगा खुआ 3 साल मिडिल स्टेज जैसी दे मिडिल स्टेज पे खुआ पर्टिकुलरली अलग सब्जेक्ट खची खुआ इंट्रोड्यूस बचा जैसे कि साइंस दे रहे सोशल साइंस दे रहे दोन इंट्रोड्यूस बचा मैथमेटिक्स नेशनल लड्डू लेनी हो इंग्लिश पे लैंग्वेज पर्सनल लड्डू लेनी हो चाहे ना हिंदी या लैंग्वेज सब ना दोन देखा खोल सब चा ने देखा ना खो सेकेंडरी स्टेज पे 9th क्लास ने अपना स्पेशलाइज खो सवाल सच्चा कि 9th क्लास में का सब्जेक्ट पे का इंटरेस्ट के बेसिस से का कोई सवाल पे सब्जेक्ट ही दे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में छेद ध्यान स्किल्स आ इंट्रोड्यूस बसिन स्किल बेस्ड एजुकेशन खचे सब्जेक्ट खचे इंट्रोड्यूस बसिन साथ साथ में अति मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट खचे इंट्रोड्यूस बसिन चाहे ध्यान पर्टिकुलर लिखे फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल का कॉलेज लेवल का स्टडी बे स्ट्रीम ही बेस पो दे अलदन चिन चाहे ओदे स्ट्रीम उनी बेस पो गता मेडल स्टेज पे कलदन चिन दोनों माता प्रिपरेटरी स्टेज पे कलदन चिन 3 साल पे या मेडल स्टेज पे अनुखा सिल भी दे लैंग्वेज पो दे स्किल्स उन खुआ दे फाउंडेशनल स्टेज दंचिन चल दे फिर दी ग्रोथ रिसर्च बेसिका दे पर्टिकुलर स्टेज उनका फ्री अनु चेंज हो सुन खुए ग्रोथ ना डेवलपमेंट खुए संबंधामी तरक्की अनु चेंज हो मना ओवरऑल रिसर्च बेसिका चेंज हो मना दे पर्टिकुलर स्टेशन एज ए माइल स्टोन लेने दे स्टेशन अनु डिविजन बसे खुआ अलग अलग एक्सपोजर तो
1: दूसरा साल पे देखकर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी का इम्पोर्टेंस निपुण भारत जैसे बेसिक रीडिंग राइटिंग दोनों मैथमेटिकल स्किल्स तीसरी सुपा यू मोचा खाचा निंजो
0: फाउंडेशनल स्टेज पो माना इम्पोर्टेंट इन दिस फाउंडेशनल स्टेज पे आता इम्पोर्टेंट चीचिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी दिस फ्री 6 साल या 6 साल के अंदर 6 साल सब पे फ्री ब्रेन ही डेवलपमेंट आता 98 कम्युनिटी ब्रेन डेवलपमेंट आता रिसर्च ड्यू इंडिकेट बस इन सु की 98% तक कोई ब्रेन डेवलपमेंट कम्प्लीट छे 6 साल सब पे देगा नाल तिक पे लुस्खानी डेवलपमेंट कोई चाहना पहला 6 ईयर पे चम से एक्सपोजर ताना चम से वाइब्रेंट इन्वायरमेंट ताना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का तो ताना केयर थोपना दे सब पे का खुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में माना स्ट्रॉन्ग छा जिन सुख बेस दन जिन सुख चाहना ब्रेन इज स्ट्रॉन्ग छाना समसल दन ना दे पीरियड पे अनुक दन जिन सुख दे साइनेप्टिक कनेक्शन दे कनेक्शन यानी कि खुए मति जाना एक्सपीरियंस ही चोशा या खुए एक्सपीरियंस बेस पोल दन जिन सुख समस एक एक्सपीरियंस बेस किमोल दन ना खुए फाउंडेशन पो खुए संबंधों में तरह का स्ट्रॉन्ग ना वाइब्रेंट मल दन जिन सुख दे 5 साल पे अनुक खुआ समसल दन ना फर्दर दे कना यहाँ दन जमीन सुख खुआ दनखन पे का फर्दर खुए दिखा एडचेंज इनहेंशन छाजन सुख चाना देखा चमचे खिमोल दान न दे सब खुए फ्री डेवलपमेंट यहाँ जरूरी इन सुपे दुआ खुआ आगे की पढ़ाई खुआ आसान छाजन सुख लो स्पीड तरकाउन सा लोफिया सा लो स्पीड चीज पे अनु बाकी सब पी चीज खुआ मन समझ छाजन सुख चाना फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी दी फेसों से फाउंडेशनल लिटरेसी जमाना फ्री अति स्कूल जर भी सवाल जर भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चीज होंगे टेक्स्ट बुक चीज होंगे मीडियम ऑफ लैंग्वेज होंगे दे मीडियम पो आता कारगिली कंटेक्स आता इंग्लिश इंग्लिश अंखोए साइंस सिलते हैं इंग्लिश अंखोए मैथमेटिक्स सिलते हैं इंग्लिश या टेक्नोलॉजी होता दे बारे में ची बना खोए सवा पो फरदा साइंस उन सोशल साइंस उन इंग्लिश हासिल बना चाहे ना तीसरी सापे खुआ इंग्लिश लिटरेसी स्किल्स पर लॉब्स पर तीसरी सापे खुआ का तो लिटरेसी स्किल्स लॉब्स ना तीसरी उंगाती इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसी तीसरी क्लास खोस लर्न चुचेन रीडिंग के लिए दिगनाल ती खोस रीड बचेन लर्निंग के लिए चाहे तीसरी उंगाता इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसी चाहे जब ना हर का तो तीसरी अपेक्षा अंग्रेजी अनु कुछ सेंटेंस फ्यूलेंस जेर बंगिन जेर दे मल्ला पुछुतना मैथमेटिक्स सवाल उनको छुचिन जेर बंगिन चिन दसोला हिंदी सिलचिन ना हिंदी आर का तो हिंदी या उर्दू सिलचिन ना हिंदी ने उर्दू या तीसरी अपेक्षा हिंदी बिखानी कम अज कम 60 शब्द चिखवा सीले दे माला पुछुत पर गोस छुत पर खे बेसिक लिटरेसी खे देखा एचूज हो सिंस दस हो संगा था मैथमेटिक्स सी नंबर कॉन्सेप्ट या नंबर से रिलेटेड डिवीजन बचा नंबर का ऑपरेशन दो से रिलेटेड या मैथमेटिक्स स्किल चो जिंदे दे स्किल पो तीसरी सब दे बेसिक स्किल पो खे डेवलप चार हो सिंस दो शाना दे गना अल तिखवा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पो मैथमेटिक्स सिलचा या कंप्यूटर ही देन द चीज सतों गामा अंडरस्टैंड बे फिया दे सॉल्व बे फिया दे चीज उनको अंडरस्टैंडिंग बे फिया दो खवा दे बेसिक स्किल्स पो दे सब तीसरी कल सब लब्ज ना एल समझ है जिनसु दे फिया जिनसु की तीसरी से पहले बच्चे का फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी माता एचीव चारो

0: se subject chi che for example nga history and show da lekin nga science lekin science nga chemistry ne physics ta history lenu sa lekin do choice pomet pro so nga history ne chemistry yanga chemistry ne physics ne nyamo nyamo nga skill mas carpentry se related information chi yanga tourism se related kuch lenu samet the opportunities nga ta di 12 ape met pin chana 12 ape nga ta मसनल जिसकी फाउंडेशन स्टेज दे गना प्रिपरेटरी मेडल स्टेज दिस स्टेज यू हम लोग फ्रूया राय इंटरेस्ट पो पता है जिनसुक राय स्कोप पो राय इंटरेस्ट पो या राय फर्दर फ्यूचर यानो जीवा गा निंचिन सुक जीवा रोशिन सुक नी इंटरेस्ट पो गा सुक चिदुक नी पेशेंट पो गा सुक चिदुक दे टाइम पे डेवलप छ जिनसुक छना ट्रेडिशनल सेटअप पे नुगा ता दो चो इंटरेस्ट डेवलप छना गा ता स्कोप मन मेत पिन छना दक्षान दिस स्कोप पो प्रोवाइड बसिन सुक की बच्चे के लिए बुकेक चोशे माते बुकेक जान जाना बुकेक जाक्स जाक्स दे अलग अलग अटेम्प्ट्स आ जात बच्चे का चॉइस है कि कौन कौन सा करेगा केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी रख सकता है फिजिक्स बायोलॉजी के साथ वो मैथमेटिक्स या उसके साथ ज्योग्राफी रख सकता है या वो एक स्किल का टूरिज्म रख सकता है या अपेरल कुछ और रख सकता है दोनों दोनों गाँव में ख्वा चॉइस जाक्सन छाना नाइन कैला से अपनी ख्वा चॉइस स्टार्ट छाचिन इलेवन ट्वेल्व सपेक छाना खुए बेसिक चॉइस सब्जेक्ट छानो खुएल धनचिन खुरी इंटरेस्ट से बेसिका छाना दे इंटरेस्ट से बेसिका खुरी चॉइस पो लेन खान पो खो फर्दर खुआ सा दे चीज पहनु खुआ लस बस नहीं होन चिन सुख सिसी होन चिन सुख फर्दर खुआ दे नॉलेज गेन बखुआ इंटरेस्ट होन चिन सुख दो सौ ची दो हैं जो कि खो ओपन चॉइस ना चा फ्री आता मैक्सिमम एकेडमी अनु प्रूस कुछ डिग्री बस ना खुला चंग स्किल चिक आती इंडियन एजुकेशन सिस्टम है पास सिस्टम पे स्किल चिक म्यों मत दे माना यानी पीएचडी बस ना यंग आरा अंगरी चीज शिक दें दी बच्चे चौशिक क्लास बे चीज माना हुनर चीज में स्किल चीज डेवलप छह में पिन मशाना दासन दो आता छाचुक पीपीएस इन चुकी आता फ्रुआ सिक्स क्लास के नफान ला स्किल एक्सपोजर तुम आगे जाके ट्वेल्थ का फर्दर को स्किल एक्सपोजर दूँ ताकि वो ट्वेल्थ के बाद कुछ काम कर सके फिर इसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा टाइम मिलता है वो ग्रेजुएशन करेगा फिर कुछ काम भी करेगा छोड़ के फिर से वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं छाना एक लाइफ लॉन्ग लर्नर दो सौ शीख विजन ही करता दी चीज सुनता ध्यान सेटअप पे जा सकते
1: विलायत साहब तो दिया उन्होंने बता दे स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन का दोनों प्रैक्टिकल लर्निंग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी छा दी अप्रोच पोस पी एच डी बस यंग लाइना स्किल मैथ छा दी गेप पो गो काम बचा
0: स्किल बेस्ड एजुकेशन चिपा बहुत सारे काम इफे एलिजिबल खुद का कर सकते या खुद छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट बना माता एक डिग्री के साथ साथ स्किल जैसे कि माता जर्चिन दी एजुकेशन पॉलिसी जर्चिन की टेंथ पास होते होते बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर हार्ड स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए जैसे कि दसवीं पास उसी को माना जाएगा कारपेंट्री करना आता हो इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा बहुत आता हो या वो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ या करना गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ करना आता हो और वो करना आता हो तो ही उसका टेंथ पास माना जाएगा फिर ट्वेल्थ में कुछ स्किल का चिका था फर्दर दिस स्किल दिस रिलेटेड कोई वोकेशनल स्किल से उसके बगैर गाता स्किल बेस्ड एजुकेशन से बनाता पहला प्रैक्टिकल एजुकेशन कंपिटेंसी फ्री डेवलप छाता रट्टाफिकेशन या बाहरों से गाता कुछ कंक्रीट कंपिटेंसी बच्चे डेवलप
1: प्रैक्टिकल
0: एक्सपीरियंस बेसिक लर्निंग छुचा सबक पोजरे ना दे कंसेप्ट पूछते ना दे कंसेप्ट एप्लीकेशन पे का फोकस ना चा मैक्सिमम आता ट्रेडिशनल सेटअप पे अनुक टॉपिक चिंग याद बचा दो से रिलेटेड क्वेश्चन पो बेसिक आंसर चीज उससे दो याद बस आते एग्जाम आंसर चा एग्जाम आंसर भी सिंह ने पास हो सकती ना यहाँ दे बारे आता एक दो साल के अंदर अंदर या मैंने आता एक महीने के अंदर अंदर गाँव में अर्जित छाना दो छाना दे सवाल पूछा रोट मेमोराइजेशन रोट लर्निंग रोड लर्निंग बाहर खो फ्रू ला कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन तीन छो में पिया खो प्रैक्टिकली खो सवाल पे कॉन्सेप्ट पो छूते ना दे एप्लीकेशन पो दे लैब पे एप्लीकेशन पो बचा सब पे खो दो सच्चा सो और दिस अपेक्षा मीन्स की खो अंदर एक एटीट्यूड डेवलप बचा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप बचा ताकि खुआ दे चीज पो पता होती कहना बाइन मत बाइन कहना बचा खुरस बचा
1: प्रैक्टिकली
0: बचा गंदगी में बोझ जाएगा गंदगी माहौल खराब होता है यहाँ स्कूल यहाँ साइंस यहाँ सब जा माहौल खराब हो चुका छात प्लास्टिक साथ छात गंदगी पाना छात वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन दोनों गाँव में छात जा दे कंसेप्ट

0: elachi chi anamana to chutpa chutpa datswa ratta tangse exam as bichin chichya kho de concept pu chuchin chutena khos khores bajin khuri la pyan ya chai chota mota chi bana classroom me bana classroom se bar bana khama bana khos bachin ek bar bachin ba ngin chin super means khos practically khoy andar attitude chi develop chachin ki khos gandagi bachamen yang chis bana khos dwa This is become a practical education. Hard skills, vocational skills.
1: Critical period change. China, ngati the new education policy implement behave tam je challenge jo jo. Khas kar ngati the area tos Ladakh tos jaga ne anuk. You leb chupa the anuk challenge tam je jo dona department is the challenge po or kam behave ga chuk last be.
0: Ata chi policy chuna de policy manar de mek. Choli paper ya manar de mek.
2: Chhoshoi kamar de mek.
0: Lekin to jab ground level ka level level se dhyan kafi gap na ta create chin ta se policy chuna then also da ta national education policy manar de mo document ya ab do ground level ka level level se ga ta man bahut sare loop holes chin da da context ana na ta ga policy chuna ga ta national level ki chuna ga ta ngati remote area no lada remote area no implementation be pya yang naya naya challenge ka tonga ta dhyan absorption ya Chanangata, for example, Nata, Menmen, Katultanangata, Polsu Timeka awareness Nata, Topenuk Chai, the Polsu Shulbipia Sirip, Mata Minda Chiknisla, Administrator Chiknisla Patanchik, Yasirip, Teacher Chiknisla, ya, Academician Chiknisla Patanchik, Sapik, Samin, the Polsu Mata, Administrator Ingatanspangata, Stakeholder Gama, Parents, Teachers, Schools, Private School, Government School, Gourmeti. Remote area school, har miya diun pata omargos. Do pata son se chi bachin zere practically kwa chut pargos. Chut mene kwa de last bamen. Chanangata ode awareness chut pi de practically har area stakeholder gangma adianuk involves so the policy chut pi don chuchon time bon chanangata chut pargos. That's the Sangata Nipun Bharat mission. एक मिशन मोड पे चला रहा है 21 में स्टार्ट हो गया 27 तक खत्म होगा अब 21 से 27 चना दसन टीचिंग का नाम 26 सो एक साल में मालूम चना गाता बहुत सारे चीज गैप गाता आलू से ना खची माने पता में दुगा से चीज बचिन दर छो इंच चीज दर छो मेन स्टेक होल्डर का चना गाता चैलेंज चीन की अवेयर छ मेनु को अंडरस्टैंडिंग छ मेनु निस्पों गाता फाइनेंशियल इशू चीन सुंपों गाता गांव सानु पेरेंट्स लेवल की अवेयरनेस बचा या स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड उस लेवल पे लाना दे लेवल पे टीचर की कैपेसिटी डेवलप जो चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप जो चाहे छाना पॉलिसी अनुमान मर्द मजरूत है वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट खाची जो बच्चों को चॉइस देना चाहिए अब उस चॉइस के हिसाब से फैकल्टीज होना चाहिए टीचर होना चाहिए बाकी कंटेंट को अवेलेबल हो रिसोर्स अवेलेबल हो दोनों गाँव आता अवेलेबल होता मेन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता डिजिटल इनिशिएटिव्स दिया जो कि हर रिसोर्स डिजिटल फॉर्म में अनु डेवलप अवेलेबल बस जैसे कि रिमोट स्कूल्स अनु आता स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट बोर्ड्स आता से ध्यान दे लिंक्स और शेयर पैसे आता दसन से ना दीक्षा जरे फॉर एग्जांपल टीचर इफ या दीक्षा ऐप चिक के ऐप पे अनु टाइम टाइम का अपडेट ना टाइम टाइम ओरिएंटेशन ना ताकि सब जगह जेखी उनसे जरब में ना टाइम टाइमिंग डिजिटल के थ्रू भी रिसोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश बेन रिमोट रीजन सा नॉट रिचेबल एरियाज आना वहाँ क्वालिटी रिसोर्स उधर डिजिटली मीन्स का वहाँ प्रोवाइड बेन छाना दो प्रोवाइड बना दो चल रहा गैप को फिल बेन लेकिन फिर भी वहाँ इम्प्लीमेंट बखानून खासकर स्कूल लेवल का या इंस्टीट्यूशनल लेवल का इम्प्लीमेंट बखानूनी माइंड सेट में चेंज छो माने एक्सपेक्शन हुआ था जैसे कि पुराना माइंडसेट में आप एक नया माइंडसेट में आना लर्निंग एटीट्यूड अनलर्न रीलर्न करना दे एटीट्यूड पर डेवलप छोचा पुराना सिस्टम पे कंफर्ट को दुख दुख अब नया सिस्टम पे आता हूँ मुश्किल से दुख अब वो मोटिवेशन
1: और बहुत कुछ करना
0: पड़ता कम मेहनत बार कुछ अब थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना चाहिए अब कुछ ऐसे भी सोच सकता है कि भाई ऑलरेडी हमें फैसिलिटीज तो है अब क्यों मेहनत ज्यादा करना किचन और माइंड सेट चेंज बचा तुम सा या स्ट्रीम लाइन बचा हुआ था मन चैलेंज दुख पाए दिन चे भी
1: बुराइत साहब गता प्रोग्राम में वक्स पाऊं हाँ अखिल ला लेब जो छाना यारी करना दियो

0: इस पर की मतलब ब्रॉडर वर्जन है, अदर्स अगर पूरे हिंदुस्तानी लेवल का कदलता न रिक दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो एजुकेशन सिस्टम पो गलता से खेल रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज और गचुगा पेरेंट्स चिगेस टीचर्स चिगेस हाँ यह मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी खोरेस दोनों गवर्नमेंट इस दी एजुकेशन पॉलिसी कामयाब बेफिया गचुगा मदद बन जाएंगे
1: छा मेन ब्रॉडर विजन पर दा दुख ना ती दी एजुकेशन पॉलिसी नेशनल लेवल का मकसद पर दिया जो कि स्किल्ड कंपैशनेट ह्यूमन बींग चिक ती सोसाइटी अनु डेवलप छा चुचा एंड कि जो एक स्किल हो कुछ काम करने की क्षमता एक स्किल क्वालिटी भी हो स्किल भी हो कर सकता हो और वो कंपैशनेट हो कंपैशनेट मींस ना जो खुद के लिए अच्छा सोचता हो दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो सोसाइटी के लिए अच्छा सोचता हो अच्छा सोच रखने वाला एक केयरिंग एटीट्यूड वाला इंसान पैदा करना है जो कंट्री के लिए फायदा हो देश के लिए फायदा हो और इंडियननेस के अंदर ह्यूमन चिंगाता सोसाइटी पैदा बचो जो इंडिया पाजरे इंडियन की करो प्राउड फील करता इंडिया देश भारत से दे प्राउड फील बचा जो बहुत ही कंपैशनेट केयर वाला इंसान हो और जो जिसके अंदर कुछ स्किल हो जज्बा हो करने का वो करता हो और देश के लिए सोसाइटी के लिए खुद के लिए डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करता हो एक कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन पर्सन हो और लाइफ लॉन्ग लर्नर हो लाइफ लॉन्ग लर्नर हमेशा वो सीखने की एटीट्यूड उसके अंदर हो और सीखते रहने वाला उस तरह का इंसान आती सोसाइटी पैदा भी दी विजन पो दी पॉलिसी दो यम्बो यम्बो आती रोल छाना हर पेरेंट्स इन्ना टीचर इन्ना मेन रोल इन दी पॉलिसी आती ग्राउंड लेवल का क्यों मिफिया छाना सा रोल पो ची बचे गचुक सपोर्ट रोल प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट बचा रिसोर्स पैदा बचा रिसोर्स सपोर्ट बचा सुई रोल एज ए पेरेंट्स वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे सोसाइटी को सपोर्ट करे स्कूल को सपोर्ट करे हर कोई अपना एक्टिव रोल इस कंटेक्स्ट में समझ के खोज दे रोल पो का तो बना माता कामयाब तरीके से माता दिचो सोसाइटी फ्यूचर है माता अलता निंजिंस
0: डॉक्टर साहब यदि उजुसरी मो की गति मेमां सुन ला गति तखान ला न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट 2020 से शुरू बस पीती पॉलिसी स्कोला सल्पो बसेरेस गति मेमां सुन जस क्लासरूम हिंदुस्तानी इकोनॉमी प्राइम मिनिस्टर स्लोगन जी तक 2047 विकसित भारत दे गोल पे अनुक दे क्लासरूम कंट्रीब्यूट बचिन दि सिस्टम पो पूरा गचु गल दानचिन दी एजुकेशन पॉलिसीज गचो मदद बचिन जर भी दीज दी स्पेरा गति मीमांस पल्लेब चुचे का इनशाला मीमांस यों में जो ना यंग अतः समा स्कीम ची गवर्नमेंट ही खुरे दी सेवा संकल्प अभियान इत्तहत यंतां सुपा यंग थुतुक देख मन गचान ज्यादा शर्त बस जाजू खुदा नर सामाने फागरें

ज्ञानचंद डोलमा ने प्रभा निश्चित आकाशवाणी करगिल कना दिन सदा का प्रोग्राम मचे दिन पे प्रोग्राम मजद प्रोग्राम सिर पर मजद प्रोग्राम शर्मा ने चुनिफिया प्रोग्राम सिर तसे फ्रचुकन पिन असगर अली शेना गजल का तुर्क ने मिनट समझे का सगत पुने फे प्रोग्राम यल मजाद सिरतां से फ्रुट गन पेन मुहम्मद यहाया यहां पर सोने प्रोग्राम यल मजाद शामे बाजार दोनी का मुहम्मद सादिक रशीदना साने बाजार गया थे का ठमाक में निफे प्रोग्राम फ्रुट चुक जाएं गुरलुक्स प्रोग्राम फ्रुट चुक जाएं साने बाजार गुने मिनट समझो सिरतां से फ्रुट चुक गन पेन सज्जाद अली शुजात आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी न अंग्रेजी खबर उन्डली बचाए निशामी बजा त्रुगी का यंग आकाशवाणी श्रीनगर का ना उर्दू खबर न तफसरा लेंगे नमजत उर्दू ने मैंने निश्चय से कहा जाना सखला आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दू खबर न तफसरा रेले बचाए सन बाजार के निम्न गिशुन लगाई का ना सन बाजार को निम्न सुमचु सकपा जो निम्न नचे दिनी फ्रुचु पर पे प्रोग्राम ने सिरपो मीडिया में उतरु ज्ञान आगे शुज बिन अब जिकल हर्ट्स मीडिया में सोचे ना कब ज्ञान आगे शुज बिन अब जिकल हर्ट्स एफ एम रिगाय शहर चिक मेगा हर्ट जोन मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आर का चल आकाशवाणी करगिल का ना जरिन वक्त पर फिटर का बजाग ने मिलेंगे शोर सका संसुक पुर्कियां खबरें यह मजाद

0: شرمل چونی فی پروگرام انتسنا بنجت بین پروگرام سر تان سی پروچکند بین من اصغر علی میرے میں کدیو آکاشوانی کرگل لین وقت بابا جات روک چندو آکاشوانی دہلی کنا ہندی ان انگریزن خبرن ریلے بیت
1: کھیل کھلاڑی کھیلوں کا آئینہ
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस सहमति पर समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
3: Annually, we have been meeting regularly.
4: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने

0: पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि आईआईएम बंगलुरु, आईआईटी कानपुर और आईआईटी चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year.
2: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the 7th largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
1: Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that India has so far successfully navigated disruptions to crude oil and natural gas supplies amid the ongoing West Asia crisis and disruptions in the Strait of Hormuz. Addressing an event organized by the Merchants Chamber of Commerce and Industry in Kolkata, Mr. Puri said that however acknowledged that the global energy situation remains challenging going forward. He assured that the government is closely monitoring the situation and will ensure that the disruptions do not get out of control. The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said The government's

0: Adaba na di hesapu ngatang la gelba natija kun yungchas insang zirba chindu. Kasata spera mongmo brotmet, ryamso mongmo raksmet zire ngati atapuni kasal sang yote inkan, di frezna ngaz ngaris prondi ka jakse, dirin si trisu yantang sakpa lepchuget, nyan nazat dirin si trisu la. Dirin akashwani kargili grelika sakit program pe nuk trisu tangmatimina. Kambar Ali Akhon Memorial Hospital Kargil Chosna, Dr. Shujad Ali Sturjusikonsiot, Dr. Sahib, Assalamu Alaikum.
1: Walaikum Salam.
0: Dr. Sahib Ju Chana Daksangata, World Rabies Day Dulinjot Pana, Nas Nati Mimoskula, Yarishitanuna, the Rabies Pugasukchi and Waji Rabies Pishitanuna Gates, Gasuk Zostachika Dupurgoshazin, Diskolagati Mimoskula, Yeres Mofasalba Semolna, Rajaladupa, Bakshis Dr. Sahib.
1: Bilkul you have a Dringata, 28th September, Harsal Joheki, World. Rabies Day nata observe chua. Lona is all ladichi and this World Rabies Day 28th September ladichi and this observe chusin jo. World Rabies Day jo hai nata World Health Organization is har sal jo hai ek theme hota hai uska jo hai wo har sal change hota rehta hai. Dichi theme puja asdu chu World Rabies Day fila stronger together zare dichi theme puja asdu WHO's World Health Organization ni chukna. Tana World Rabies Day dichi jakpo manai chia basin zan naga to dini jakpo phespa change zan naga to nata accentis hai 28th September ko jo hai 1895 yanu kho di gana duniya ka nargalin French ek biologist tha Louis Pasteur jinchingata sa pata yo to khus rabies jo hai wo diagnose pehla jo hai usne French jo scientist ne jo kiya tha Louis Pasteur ne dono ko vaccine yana zarna vaccine po jo hai rabies vaccine po Louis Pasteur ne hi develop kiya 1890 mein chana de viladi jak po 28 September phespa jak chik uske naam pe jo hai World Health Organization ne ngata di ek awareness day ke hai से जो है हम मनाते हैं हर साल तो इस साल भी हमें एक थीम लेके स्ट्रॉन्गर टुगेदर जरिंचिंग आता है डरिंग वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर लगाते हैं ऑब्जर्व चुसें जो
0: बख्शे डॉक्टर साहब जो मना अर्धमोमोस छाना दख्सा गति गा यक्षिकतुन मनई कतुन बना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शितानुना खुई मखसूस इन मत पत भी थीम चिंगता लगो चाजन सुजो छाना दान ना खसूस इन दिचिक 2026 सानो गति स्ट्रॉन्गर टू गेदर जरिंचिक मतलब खुई थीम पुजा से दी थीम बिशितानुना गति मेमोस कुनेस गचु दिशितान सेनेजलन मोशा Ati Mimons Kunes Medical Department in Bugasuk Lachtu Dija Provoshas in or Dia Pumpungati Mimons Kunla, Gatuzo Stachika, Fasanji Charvoshas in this colour of Fasalba Zamonaria
1: Provoshas. Stronger together Zenagatu, Dianungata, rabies infection, Johangata, acute life threatening, you have fatal infection, Chinjuan, virus infection, Jungatanga, Samba Matanga, Dianungatis, Nati Saknatang Lokse, Dika Lasma Banagato, Jusnata, Ek Janleva, Ek Bimari, virus. Infection change jo asa do rabies virus ke nata yo chana jo nata stronger together team dekhne jo sense ki hum sab milke is pe kaam kare yara zar na to rabies do jo situation ki chik chine chik chiz bas na nata do kam che chame na isko khatam hoga yara zar na hai na chana de nu nata har cheez jaise ki nata as a health worker zar na ya nata community participation ka nata ati public dhyan ko involve chargo sha social and organization involve chargo sha jo la nata yata di radio nata akashwani na nata social media na NGOs na yatanga yonche mein har department jaise ki veterinary department ho laboratory pan jo hai yatanga sare jo hai workers ho social organization ho community ho har public jo hai isme government ho semi government har cheez isme involve chahe education system ka yatanga isme awareness ho isme sab milke hum is pe participate karke is pe agar raay amal chikchu se yatanga isko matlab fight karne ki koshish karenge yatanga denga yatanga isme is goal mein yatanga success jinki taaki yatanga rabies खत्म हो इसीलिए ये थीम रखा है स्ट्रॉन्गर टुगेदर जरेगा था एक थीम रखा है इस साल का कैसा
0: बख्शी डॉक्टर साहब छाना हर चीज से अनुगता हम पब्लिक इशू ते अनुगना हम डिपार्टमेंट इशू ते अनुगना हम गति माहौल इशू ते अनुगना दून गा मांगा तांगला सख चिक सो से ना जी दुनिया पे अनुगना तांग दुप लेकिन जरूरी इन सुपर जो छाना जी रेबीस पु खुरांग दी जर बात पे पे जरमु खुरांग गसुक ची इन जो और जी रेबीस पु ची करना ता मोचा इन दिस को लगा
1: साहब तना रेबीस पु गता एक वायरस जैसे नगता चीची बैक्टीरिया चीची वायरस जरासीम है वायरस जो है उससे होता है गता दी वायरस पो लिजा वायरस जेंचिंगता एक टाइप चीज दी वायरस पो जो रेबीज जरखानी दी इन्फेक्शन पूछे थे जरना लिजा वायरस दर्शन देता एक फैमिली होता है इसमें रेपडो वायरस जेंचिक दी वायरस छता दे वायरस जो है कुछ गता है इंसान ना बाकी चीज सुन लगाता दे खिस सोता बना है सुन ना रेबिड डॉग्स को मतलब काटते हैं यहाँ सोता बना लगाते जरूर में सो की पगल खिस सोता जरूर में था दो इन सुन पगल दो चीज रे जक्सन सुन में आता पोनी समझ रहा हूँ, तो वो एक फियर बना के रखा है कि पागल कुत्ते निकाटे है ना, पागल

0: Mamoju, Daksa Yangata Jutu question Jibini Poju, Ki Daksa Gata Ji Mana Januar Kuna Sokaton Tabna, Kachu Nukata, Zahri Soxi, Yunchena, Ya Daksa Misal Nati, Michiga, Agarkoa, Mad Dog is Sotapsio, De Postusan Mazerba Costa, Vexin Samalan, Koniumbo Agarnate, Lagdes of Riskaton China, Yang Chicha to Bierin Chachazina, Discola Sativana.
1: Kasa, Duena Zerna, virus for rabies, virus Johangatan, Kiets, Chanaka to Subsipella Coaches in the Nagato. Infection bukhos khora infection bukhe kho pagal chiz hunse na ka to khe dimag infection hota sabse pehle nazar na brain ka infection hota dimag infection chiz se iske isliye pagal kutta bola na pagal isliye bolte hai nazar na isliye wahan pe ngata chiz na infection brain la chana ka to kho ngati de thu bing jaise saliva jaise do bing jaise gobat bo ur sik matlab salivation jaise ra do kho khachu thi bing jaise khachu ang khe virus putuk pana ka to khachu ka to phokna jaise ki ngata chok pada jinga khila agar ka to na kho virus रेबी सोंस होने का तो खो दमशमिन अगर का तो डोमेस्टिक भी हो ना अति पालतू भी हो को दम मदन को शोर है शोर है और मतलब खो शिक्षा से कुवत छोटी चीज में खो दिमाग का सोंस होते वो पागल हो गए इसलिए आपकी तरह आएगा मतलब अनप्रोवोकेट बाइट करेगा ओके ना मतलब ये चांस रन मजन मयों से हरदा सिंह से सतपचा सुधा कोई एक चीज प्रोवोकेट नहीं चाहिए रजगन मना को डिफेंसिव में सतप का चीज डिफेंसिव में सतप ना तंग तंग चेस तंग तंग खो पागल ना पता चल खो मन पागल दुखो मन दम दम शा बोशा खो आवाज चेंज छ मतलब खो दंग तंग खो कुत्ता पागल कैसा है दंग तंग फीचर्स लगभग छन का तो वो उतना गुंजाइश नहीं रखा है ताकि क्योंकि ये फैटल डिजीज इसीलिए देना बहुत जरूरी चाहे खोए लगभग जिलवांगतों या खोस लगभग चाहती जख्म खोए खचू बसों या खोस देखा चेतंग छन का तो उनमें जो है देना बहुत जरूरी है वैक्सीन देना बहुत एहतियात बरतना देना बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली हेल्थ वर्कर्स ना बाकी चीजें सों से डॉक्टर के सों से या पैरामेडिकल्स को कहीं भी सेंटर में जाके आपको इन्फॉर्म करना और वैक्सीन लेना और इसका जख्म का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है नाजरना मैंने खचुआ नुमान ज्यादा दुगंधुक और खासकर खियां खिया दुगंधुक तकरीबन कुछ 2-3% जो है बाकी बिला ना बाकी चीज ना योचा वायरस होगा इवन की गति खचुआ नंगता वायरस खचुआ छा तो इसलिए हमें भी इन्फेक्शन लग जाता है तो हर मतलब चाहे खी हो चाहे जहाँ पे भी आपको लगे ट्रीटमेंट करना वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी
0: है जानवर पुखुरा अगर कतुन मान लो पालतू या कुत्ते की शख्स बिले की शख्स अगर दोनों खुरा वैक्सीन चाहता वैक्सीन पुता तंग मरगोशा चेन और तंग कतुन तम आता डोज तंग मरगोशा चेन और जो वैक्सीन पुतांगो मथोप चे कतुन छना यंग दुला चंग इलाज की होता दिस को लगता
1: है सबसे पहला तो जो गता आयो चिंद्रिंग अवेयरनेस का हां अवेयरनेस रिया बनाता सबको पता होना चाहिए कि स्वत बनाता वैक्सीन तंग में जरूरी और चाहे बिला स्वत अपना चाहे वचेस की स्वत अपना चाहे गता पालतू हो या नॉन पालतू हो सबको मतलब वैक्सीन लगाना उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है नाजर ना छा ना गतु गता सबसे पहले अवेयरनेस सबको लोगों को होना चाहिए कि खी स्वत अपना बाकी स्वत दी अवेयरनेस को गता दी जब सबको फैलाना है हर चाहे सोशल मीडिया हो चाहे एरंगा दी बाकी मीडिया सो जैसे कि आकाशवाणी करके बहुत अच्छा काम कर रही है हर लम्हा हर टाइम पे दी प्रोग्राम सुन दी मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम हो चाहे कोई भी इवेंट्स रखते हैं तो इन चीजों में इवेंट्स रखना चाहिए चाहे स्कूलिंग में स्कूल में हो चाहे बाकी चीज कम्युनिटीज में हो मतलब उसमें एक्टिवेट करके अवेयरनेस को फैलाना अवेयरनेस फैलाना लोगों को ये आगाह हो एलम हो सबको पता हो गया पता छा कुछ पता सुन से मैंने चेजर में पता मछाना का तो ये चीजें होता है कि चा मिछात पदर्श बदे इसीलिए जो है दी चेयर स्ट्रेस चेतन का तो ये बाकी चीज टाइम तक चेस में नहीं रहा क्योंकि एक बार लग गया वो उसके लिए और कोई दवाई इलाज है ही नहीं ना मगर टाइम पे वैक्सीन तक तो ये प्रिवेंट है नहीं होगा प्रिवेंटेबल डिजीज है ना दे फिर प्रिवेंशन ही करने का तो प्रिवेंशन में बहुत सारी चीज होते हैं सबसे पहला तो हर एक साइकिल है ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो सब जो है गुल मिल के एक एनवायरमेंट में बैठना होता है मसुआ छा ने तो हम सबका हेल्थ जरूरी है चाहे घमा बिया हो चाहे बिला हो बलंग हो बेतो नोर हो वो सब जो है सबका हेल्थ जरूरी है जरूरत है कि अधिक बलंग पंद्रह छा का तो ये एक दूसरे पे लगते हैं ना एक साइकिल है।

इसीलिए कहता कम्युनिटी सबसे प्रिवेंशन सबसे पहला तो कहता एहतियात बरतना जरूरी है। दूसरा जो है कहता चम चिखी होने का तो उसको भी वैक्सीन कराना है चम से बिला अपना वैक्सीनेशन बार कुछ अगर कहते तो खी पॉपुलेशन बढ़ाने को तो स्टरलाइज करके उनका पॉपुलेशन कम करना पड़ेगा उसमें दून कम चोर को अगर खीमो भी होता तो जगह खच्ची कहता दाना खच्ची खी खीमो मगर ये नहीं है कि यहाँ पे रेबिड डॉग है वो हमें पता नहीं है ना सर्वेलेंस तो भी तो बहुत जरूरी है कहता देखा रिपोर्टिंग चम चिखी स्वतः दुख दे रिपोर्टिंग जरूरी हर जगह का हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब ग्रास रूट लेवल से लेकर नीचे से ऊपर तक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई अगर पॉलिसी बनाना हो या जो प्लानिंग करना गवर्नमेंट नहीं हो बाकी चीज हो इन पे सोचना है ना में ना चाहे सर्वेलेंस पे हो चाहे आपका रिकॉर्ड हो चाहे तो हम जिस तरफ से देंगे रिकॉर्ड तो वैक्सीन पे वैक्सीन जो है हर जगह एक्सेसिबली जो है एक्सेस हो और अवेलेबल हो टाइम पे हर सेंटर्स पे हर पीएचसी पे सब सेंटर्स पे मेडिकल एड सेंटर पे चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो हर जगह हो इवन की जो है जगह तकरीन जो ना तो वहां पे ना कोल्ड चेन करके वहां भी रख सकते हैं ना आप स्कूल में भी रख सकते हैं मसूआ जगह कम्युनिटी सेंटर हो कम्युनिटी सेंटर में रख सकते हैं देन आता टेम्परेचर पर मेंटेन बसे वहां पे भी रख सकते हैं लोगों को मतलब अजुक खो आधे बारे सबसे कैसे लगाने जरिए कर सकते हैं ना छह ना तो प्रिवेंशन तो सबसे प्रिवेंशन पे तो इनकी पहला मास वैक्सीनेशन जरूरी है खेलना और जो है ना को अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इसके बाद जो है एक वैक्सीन गुजरने का तो वैक्सीन पे टाइप नहीं जोड़ना जरना चिक प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिसन चिक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिसन प्री एक्सपोजर दोनों लजन गान इज वेटरनरी पानला गान इज प्रोफेशनल लज बिन बलान पे तो नोर बलान खी सकना दुख खनला या ले बे अनुक वैक्सीन चो खनला ले बे अनुक लज बखनला क्योंकि उनको लगना ही लगना है ना एक्सपेरिमेंट देखो उनको पहले ही लगना है दो वैक्सीन प्री एक्सपोजर सो मतबाता है ताकि वहां पे जो उनको लगने यक्षी खुन में लसोई दस्त इसलिए पहले से इनको इम्यूनिटी देना जरूरी है इसलिए प्री एक्सपोजर उनको वैक्सीन देना है ध्यान चुक लगाता डॉग हैंडलर सुन ला बाकी एनिमल हैंडलर सुन ला खून है दुखन ला या ऐसी ऐसी जगह पे जाओ ट्रेवल जो है वहां पे रेबी सी केस खिमोत वहां पे ट्रेवल चुनाव ट्रेवल चुनाव बाकी वैक्सीन करता हूँ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बाकी वैक्सीन दिया चुकला कहीं जगह पे कुछ एरियाज पे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज और बाकी जगह रेबी सी केस उन खिमो मत वहां पे रेबी डॉग बहुत है तो वहां पे पहले से ही प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगा के जाने चीख तो आता प्री एक्सपोजर जो है प्रोफिलैक्सिस वैक्सीन हमें हो गया एक पोस्ट एक्सपोजर जैसे काटने के बाद आपको मतलब किसी के काटा करने के बाद दे आता पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वैक्सीन जैसे दो आता दे वैक्सीन पुंगाता चुक सोत अपने अलग अलग देना कैटेगरी कैटेगरी स्वत अब जैसे कैटेगरी हो गया स्टेज चीचिंग लकपे का चीज रेबिड डॉग चीज चेत मसूआ या उसने ऐसे छू लिया लेकिन जख्म मसू दी जर मजर या मैं चत मचर या मैंने जुक मजुक सो मजुक पंजा जैसे मजुक ने कहते कैटेगरी वन देख वैक्सीन तंग भी जरूरत मैं उसमें लेकिन लोकल ट्रीटमेंट करने आपको टेटनस वैक्सीन या मैं इसको वून हल्के कैटेगरी पहला कैटेगरी में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होते जैसे चेतांस जरूरी नहीं कहती खींची चेतांस या मतलब किन्नी का जख्म महसूस तदी का स्क्रेचिंग से जख्म सूस कैटेगरी टू जैसे देखा वैक्सीन पुना टेटनस पुतंग जरूरी दो ट्रीटमेंट बचा दू जख्म पुला देखा आयोडीन तंग से टिंचर एंटीसेप्टिक कोई भी ना इसको साफ करके इसको ये करना है लेकिन जख्म हमेशा सूचर मामो जाए चम मचम जख्म हाँ खरक खिमो भी कहते बिंगी खरक भी बिंग चेबसे टाइट बैंडेज ही बचा इसके बाद जो है वहां पे वैक्सीन सबसे पहले टेटनस तंग चा इसके बाद जो है रेबीज वैक्सीन रेबीज वैक्सीन पे एक तो शेग तंगानी वैक्सीन चो दूना पसपैन तंगानी वैक्सीन चो चिप इंट्रामस्कुलर चिप इंटरडर्मल दे खास करती यूजुअली यहाँ पे अवेलेबल है इंट्रामस्कुलर वाला उसमें पांच डोज है वैक्सीन कहना जरना दो पहला दिन पे जाता है जीरो डोजर बाद देखा जीरो तीन सात चौदह अट्ठाईस जो है पांच वैक्सीन हमें देना है जरना इंट्रामस्कुलर वैक्सीन पर मसुआ छह न दू इनकी दूसरा जो है एक तो वैक्सीन हो गया दूसरा जो है कि लोकल ट्रीटमेंट जख्म सूझ गया कैटेगरी थर्ड पुलाता खतरनाक बस सोतब सोतना चत फांसना तो दे सूर्यता तो कैटेगरी थर्ड देता वैक्सीन पौर को से रेबीज जैसे पांच डोज मैंने बताया जीरो तीन सात चौदह अट्ठाईस दूसरा जो है इम्यूनोग्लोबिन जर खान चाहता दे इम्यूनोग्लोबिन जो है जख्म थमाकुमा जो है स्प्रेड बजे थमाकुमा लता चा देता वेट ये सभी कल्चर है ना दे वैक्सीन दो हेल्थ वर्कर हर जगह जो है हर
سینٹر پہ اویلیبل ہوتا ہے مسوں، اور جہاں پہ نہیں ہے تو وہ اویلیبل کرانا چاہیے، چاہے ایمنوگلوبن ہو، چاہے ویکسین ہو، چاہے ٹیٹنس ویکسین ہو، سب اویلیبل تو ہوتا ہے، لیکن جہاں نہیں ہو وہاں پہ اویلیبل جو ہے وہ ایکسس ہونا چاہیے۔ زخمی تھا لسخن پو گتا جو ہے۔

0: ngatang shasne ka yame nadi ka di thai ga tang na ga to yame nadi ngati galgi ga tang na tang cha ngatang vaccine song dusra jo ngatang tisra jo he ngatang local treatment pong zaruri inde ngatang zakhum po zakhum bor dom bose sab bose do mang mo zakhum yod na ga to suchar vichar mitang cha chem mi chem cha ma chem ma jo ngatang vaccine un tang se na higher jo he ngatang center ka ko refer chu chese yong chem na
1: bakhsh doctor sahab chana tus pus ngatang khashe ja ta mino akhir pi ka yang yarishi ta nok na ngati memang skol la ga chuk khatan spirali mole
0: जो है खो आता जखम पंखी मुहे छिन मति ने लख पकंग मच गेता नु दे खोए मन गो सखपा मुरे हो नु फ्रु सके वो सारे केस आए हैं ना इसीलिए लोगों को मैं आगाह करता हूं कि फ्रु नता छिमी छि बगे लगाता थमकुमा मा थकले जमी दा चखियत बिजे गा लगाता लोकल कम्युनिटी स्किन कंट्रोल बार क्वेश्चन फ्रु ल केस मन खेलने खेलने के लिए एक पार्क अलग रखना है हर जगह मितंग चकी मितंग चकी खेल खेलने के लिए ओचे में ना जगह एक प्ले ग्राउंड हो जगह हो जहां पे सेफ हो कि खिवी में ना तो टाइम का खमा लोग सोचा या जगह चिची ना मुंबई काल तंग जैसे स्कूल ना बाकी जगह चौने का तो बहुत सारे स्कूलिंग जहाँ स्कूल अच्छे स्टूडेंट्स जो है नता जो है नता स्कूल अच्छे टाइम का स्वतः से जनाऊं दे छाना वो चीची ना गेम्बो तंग जाए या वैन में स्कूल बस में देना है दोन दोन नता प्रिवेंशन ही पार्ट इन मसूआ चौन नते कैसे इसको रोके जाने का तो दो इन्हें नता मैसेज भी दो इन फोन लगा रहे स्वतः बिंदु उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि गोवा स्वतः बनेगा तो उनमें इंक्यूबेशन पीरियड भी कम होता है जैसे कि रेबीज इन्फेक्शन पर जो इनकी कंगवा स्वतः बनेगा तो कुल्या कुल्या 1 सेंटीमीटर पर डे जो है वो ऊपर आता है क्योंकि वायरस पति का लकपे का स्वतः कुला कुला भी न्योचे थ्रू जो है ना दिमाग लग जिंदे सबसे पहले वो दिमाग में अटैक करते हैं ना इसलिए वहां पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है फिर जब सीधा गोमुरी तंग मना तो सीधे उसमें कम कम शॉर्टेज जगह है तो इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड उसका कम लगता है हाजिर ना फ्रू ना ज्यादा है तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें चीजें करना होगा प्रोटेक्शन हो बाकी खीन सके पॉपुलेशन बन चुड़ घोस वैक्सीनेशन बढ़ घोस जगह एक स्पेसिफिक एरिया खेलने के लिए रखना पड़ेगा स्कूल इन नगर चाहे कम्युनिटी इन नगर तो उन पर जोर देना पड़ेगा बाकी मेमा दू इनकी हर जगह इतना अवेयर दुख भविष्य इन चीजों से डरेगा हर जगह सोशल मीडिया हो चाहे रेडियो या आकाशवाणी के माध्यम से हमें लोगों तक पहुंच रहे जहां तक ना छाना इन पे सोच के हर जगह जो है ना दी अवेयरनेस पो दी मैसेज पो लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचे और इन पे अमल करे यही है मेरा एक लास्ट मैसेज अस्सलाम वालेकुम
1: बख्शीश डॉक्टर साहब यार जरी रंथोशन वक्त कुनानुना वक्त में से आकाशवाणी करिए लिख रहे लिखस क्योंते यरी रंथोशन ना मुतिक चोक समझून मेमोस कुन सकपा लिप चुक्स पे यार अल्लाह उजू सरिमो अस्सलाम वालेकुम
0: बख्शीश यह साहब शुक्रिया
1: त्रिसु यंता सपले त्रिसो तंखन पुइन मेन डॉक्टर शुजाअद अली द त्रिसु ने यंबो द्रिंजी सगेत प्रोग्राम पु थमा थोन दो ने यंबो गचंग ले इजाजत शज दे बाजत यजु खुदा नार सहमोन फकरानु अस्सलाम वालेकुम

0: Bodi sports un lencau mana sa sensu
1: mana mana jo cha ban dare si tus pudi to shon sa ya
0: kasa
1: government of india's adventure sports in ya kisi bhi cheez se 4% reservation a jaksu
0: bakhshis kasa
1: cha na kho agar odon ya jaise ki nati paragliding river rafting odon sai competition cha chu odon ya kahin kabhi ka to medal wedal chika to kho na ya mountaineering and then फिर उसको खोआती स्टेट इस जॉब तांचिंजु ओदे रिजर्व पोस्ट चंचिन या
0: स्टेफन
1: छना ओदे मति देर म्यून ला दक्षन मंगमो म्यून ला पता मेत अवेयरनेस युद मेत मेत पनाते कम रिक बे तो दोन नते समेत की सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर या मास्टर या जे सरकारी चेक जाने में नहीं खेल कूद करना चांग चेक में तेन सु समेत मगर छा मना जरूरी इंजो या नती देर चा जक बजक जक बजक गवर्नमेंट दी साइड ची नौकरी एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिस्ट मामो दिया अट्रैक्ट जो अरेस मान दर हिमाचल प्रदेश कोई स्टेट ही कोई करीबन 20% रेवेन्यू देना सिर्फ देना टू एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब टूरिज्म बगैर एडवेंचर स्पोर्ट्स का जैसे माउंटेनियरिंग स्कीइंग पैराग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग दून सके का छाना लिहाजा नाती नीज मतलब इनके नाते संग नाती दिर योत्खन यूथ निस ऑर्गेनाइजेशन सामशिंग एनजीओ ओदियोन इस बाहर ना मी क्यों से दिका कोच क्यों से या इंस्ट्रक्टर क्यों से ना दिन सके ट्रेनिंग तमार ताकि नती फ्रून इस खुनते खुनती रोजगार अंग बढ़ाई बाई यानु छाना अदो चोस दी चोस खेलून गांग टूरिस्ट मंगो अट्रैक्ट छात तो खास कर नती लद्दाख है लद्दाख दी चोस जगह की जो है खास कर नती लद्दाख है करगिल दियंग मतलब नून कुन तो सबको मतलब वर्ल्ड लेवल यहाँ फेमस जगह की छाना ओदोन यंग पैराग्लाइडिंग बा या माउंटेनियरिंग बे फिया बाहर नमी हो से बेंदु छाना ओदो सगी फंग अति देर एक्सपर्ट इतना तो ओदे चीज पुंगा अति फुल अच्छा छ छाना दया तोला रिवर राफ्टिंग यंग अति देर सुखाशी इंस्ट्रक्टर छ सुंदुक मिंदु लिहाजा मा खाशी छ मिंदु या द्रास साइड ला दरे फ्रुंग इस हिसाब से दुख दिया ना इस पूरा बेंदुक था आगे यंग कोई करना गाइड लेने लेने बड़ा ही चारों शिनी जब मतलब कोई दी चीज पूछा हम शिव बड़ा ही चेंज देती रोजगार हो कसा बिल्कुल जो है छाना गा चीज पाऊं तारे जीप लाइन चिंग आती देर दुख मिंदुक या आती है बंजी जंपिंग जर कंची जगह मामू दुख या आती देर बा मगर उधर चीज भी फिर सुका यों से स्टेप चिक लेने आते दी तो शिव बॉक्स जर कंची सो अच्छा मिंदुक लिहाजा आती देर उधर सारी अवेयरनेस मत पना दी सच्चा मचा इन सुजु चाहे बंद दिया रोजगार आयो अच्छा जो यंग या रंग जर ना का तो इंसान मेंटल हेल्थ जर नंग स्पोर्ट्स है रंग पता साम शिक बेनिफिट योत नाती
0: हेल्थ फिलहाल जो कर सके चाहे जो मैं फेसबुक वस मुझे दिया नंग आता यार इस दिवस की आता एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो चीची आता फन क्यों खास कर इस दिव मुल्स की दक्षिण आता बेरोजगारी दिनों जाक बजाक के तो नहीं था
1: बिल्कुल बिल्कुल बराबर
0: अनएम्प्लॉयमेंट रेट जर ना बजाक बड़ी चीन और खासकर अनएम्प्लॉयमेंट पता चैलेंज पुना टूरिज्म एक गाता बहुत बड़ा स्कोप
1: बिल्कुल टूरिज्म बगैर मन आया चंग जरूर साख्या रेवेन्यू जनरेट बोगर क्लाइमेट पौधे बाकी अलहमदुल्ला जगह मामा दिया मगर हर जगह में दे जगह सुम चिया दुख तु गया दी का दी करगिली एरिया दोनों दिल थी दी शम ले साइड ला शम एरिया जर खान पंग रल्टा नहीं साख्या देती बाकी अंगार अहमद टूरिज्म ही कहता मंगमो डिपेंडेबल दुख पाया छाना नाती देर खास कर गाती करगिल ला दरम टूरिज्म ही का फोकस दे सिक दुख मिंदुक जरिए ना और छाना उदो अगर छाना का तो नाती देर रेवेन्यू और जनरेट छचिन जो गवर्नमेंट ला पेने छचिन छाना मियां खुद का फील छचिन जो है
0: टूरिज्म बूस्ट बचा से फिलहाल जो दी स्पोर्ट्स एडवेंचर
1: बिल्कुल
0: एडवेंचर स्पोर्ट्स दून गाता इम्प्रूव बचाओ दिन छुंचे गातेस हाईलाइट बचाओ जो और दिन क्या छुंचे गातेस दहियान बचाओ मन सासा दुख बसा जो
1: बिल्कुल
0: चना यार दादी अति हिमालयन दिल रिजियों से नजर न जो अति लद्दाख सो से दिया एडवेंचर स्पोर्ट्स से अगर क्विज पर आता जो आता दी स्कोप इस पर आता का तो यहाँ तक पोटेंशियल गातेस पर आता चाम शिक
1: मन यहाँ जो है माना हिमाचल प्रदेश लगी दोस्त का तो
0: कैसा
1: खो इस वो खो जरूरत की यार खेनते चौसलाशिक खिंती दर युद्ध चामशिक पोटेंशियल एडवेंचर स्पोर्ट्स
0: के साथ
1: बहुत सी खो इधर मेहनत जर दो छा लिहाजा खो जब उदो जरूरत जर न तो नता नती जाए का जरे नाते ले आते जो बंजी जबिंग चीक जाशियोत अच्छा जो नुब्रा साइड ला जाशियोत जीप लाइन रिक दें दियोत उदो ने मन रश लो सिंधु छा नतीस अगर दीर नतीस दर जात चला बाना का तो मना पोटेंशियल दे सक दुख सर की बाहर पन

0: बाहर ला हिंदुस्तान नि संग बाहर फु तो नती हिंदुस्तान खोरी चाम शिक मी अलग अलग स्टेट ना यों से नतांग नई शेस्कन होटल पर नि संग जरे देखी गंती दिर का चा एडवेंचर स्पोर्ट्स यो तमेत पैरा ग्लाइडिंग या रिवर राफ्टिंग छा तमी छा जरे छा ना इनिशिएटिव पुस्तारम सु सालेन मालेन मा दुपया अपॉर्चुनिटी मन मंगमे तीन सुख मगर अपॉर्चुनिटी नता ग्रेब ब मयन मा कसा जो
1: चना दी खदाना एक कश्मीर दु मता खदावन दारे में ट्रैफिक नियामत छ जो
0: बिल्कुल बराबर
1: जो दी जीवन खरन आदा दिन कना हते दिस रिसोर्स नि कना मता फन खेलन मा
0: लेन मा मयन मा
1: मयन मा तीन सुख जो चना दी नता आजक बजक दी चीज नते या हरेड बसे दुनी कना फन खेलन चस फिला सम सम जो दरे मते एडवेंचर स्पोर्ट्स खरन आते गति दी
0: एडवेंचर स्पोर्ट्स नती दर सर दे बेसिक पुना नता दरे नती हर साइड ला नती जैसे सुरु रिवर
1: जरिया
0: या नती दे का दी करना दी साइड ना बटालिक साइड ला देर यमसो छोर यमसो
1: नियोमजा
0: या द्रास साइड ना उमजा दे लातो साइड ना उमजा छा दीर गम सोन यंग रिवर राफ्टिंग बे रियम सो खरा एंजॉय छा घा फोर्स पिका घा स्पीड पिका जून डुल बात ओदन बेस्ट इन जर इन पया खंतस एक्सपर्ट इन छना खो नतिस लो नि सुम चिक्सना ला ना ना नची दे का दे द्रास ला होटल पे गत खोस खो से सुक रिवर राफ्टिंग बखन का तो बाहर पका तो ओदो नि जरन छि की दी दीर गम सोन सख माना बढ़िया इन जरे छना सबसे बढ़िया नति दी सुरु साइटी दो मानर दे मो इन जरे छुया छना नति दे का मगर बखन चिक सो दुल लयो मायो मायन सु यो न का तो फिर नति दर माना फायदा तिन सु देना माउंटेनियरिंग जो माउंटेनियरिंग अलग अलग ट्रेक यो मत जो है ट्रेक यो चाहे कैंपिंग बचा या ट्रेक बचा यमा चार चार हफ्ता हफ्ता दस दस दिन ही छना उदो तो सक सोंग माना बखन चिक खासिक दुख बिंदु नती देना करगिल ला चिक चिक यो तिन सुख दा एजेंसी कसा खोज बात सुख बस उदो अलावा यंग सु समी बात सुख छना उदो बगैर उदो तो माना क्या रिगत नगर तो टूरिस्ट फ्लो मामो अच्छा चादुक जो देखना पैरा ग्लाइडिंग के लिए तो माना मी मामो पागल दुख दे जो दरे माना मतलब पागल मीन्स माना हर कोई करना चाहता है क्रेज मामो दुख पाया छना ओदन सक दी दी दी चीज सुपुन मन मंग मुझे तो बंजी जंपिंग ना जिप लाइन जरे दरे हाली इंसिडेंट चिकनी शिक्षा मसवा ओदे वजह का म्यूनिजा शिक्षा शिक थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहे हैं बाकी अदरवाइज प्रॉपर इक्विपमेंट ना प्रॉपर तरीके का स्टा से चीज सबा ना का तो ओदन मन मजा इवेंट इन इंजॉय छना माउंटेन बाइकिंग जरखन पिया स्नो स्कीइंग ना अति दे का धर्म दे हेली स्कीइंग जरखन चीज है इंजॉय ये सारे चीजें मन एक्सपेंसिव चीजें हैं दिन छा जाशी टाइम रिलेंचिन मगर गाचीस पुंगता बांग यंचत गस ओदो जरेन पैरा ग्लाइडिंग जरे माउंटेनियरिंग जरे रिवर राफ्टिंग जरे ओदो मतेस आम बांग यंचत ओदो मार नतेस बा मेद नते एक्सपर्ट यंग ख्यों सेंगा नते संग सुकास इंडिविजुअल अन ख्यों सेंग बांग यंचन मिचिस पिन ओदो मति मिनिस बा नका तो मना लो चिकनी शियांग मना नति करगिल लयो मि टूरिस्ट फ्लो यंग गारा यो चमेन जो
1: शुक्र जो बाक्सिस मना फेसपा वस मुस्किंग आता एडवेंचर स्पोर्ट्स सी हते दी अलाकान यानो गती रिलजों सुनो खासी लदा से गती दे हिमालयन रीजनी चना दियोनो का चुका ता स्पोर्ट्स सी एडवेंचर स्पोर्ट्स रिक गा चोक सिंग आता गेंचा दुख गा चोक ता स्कोप जे या मता पोटेंशियल जो जरे चना जो सर ता दिन गता यंग स्प्रे चिक जुदु यरंग एज स्पोर्ट्स पर्सन जुदु सर चना दी खासकर गती दी अलाकान यानो गता विंटर स्पोर्ट्स जरे गता काफी जुदु काफी दी पोटेंशियल
0: विंटर एडवेंचर
1: टूरिज्म हजु चना दियोंग गता काफी दे इसको लाजिक दे गता का चुक चिक स्कोप या एक्सपर्ट याना एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जजु देना फील जो कसा
0: कसा ना मन चम शिक ना थों जो या कि ना रस जाय का एक्सपीरियंस बस नती दर अगर एडवेंचर टूरिज्म जरिया एडवेंचर स्पोर्ट्स विंटर एडवेंचर बना का तो चम शिक टूरिस्ट फ्लो नती दर जबेर लंगत ओदो समंगमो विंटर गुन लाउ चादु
1: कसा
0: जब ना गा गचंग गचंग देना स्पोर्ट्स मनसली गत ना फिस्ते गा दुबई ना दुबई फेडरेशन पनिस आइस हॉकी फेडरेशन पनिस कोन्स कांटेक्ट बस इस के भाई नतना अच्छी छन दुबई गुन लदी का नता एकोमोडेशन छम दे दु पीपी जगह सेंट्रल हीटिंग वगैरह दे तो सर होते یا کینیڈا نا یا نادی کنا رشیا نا جرمنی نا اب دو جگہ مامو کنٹری ملک مامو نا میونس کانٹیکٹ بس ازر ہندو کی بھائی نچا نا ادے کئیوں سے پارٹیسپیٹ بھائی ان چین ازرے کیا بنا آئس ہوکی ان چین جو زر نا اوپن آئس ہوکی زر کن پو یا ایڈونچر سپورٹس ان جو ہے چھانا کا تو ادے تو سگن یا نتی سنو سکینگ زر یا چا سنو بورڈنگ زر دین سگمن ایڈونچر سپورٹس ان جو ہے تا دین سگی فیا

0: ngatis dika agar di ngati or khas kar ngati Ladakh yang ngati Kargil region pura du mana adventure winter adventure if mana mana hab enjoy even yeranga yeral tos ngati suru side la dras side la Gulmarga gans kha junang gans junang or ya ne mission lus pana ngati dika agar government di sanza shik dare dare za shik za shik initiative glen ne da magar ga tok shik gelay base proper plan chik base event 3-4 saal chi agar proper tarike ka chho mass level yang stul na mana boost macha mana lusha menju cha zar bana yara thong ki Gulmarga ga march yang gans khang myo mana gans myo mat ngati der April Mai super lushin
1: lushin
0: chana ode tok jaga nyang summer skiing zaren chik cha ju summer skiing adventure chi ne ओदे चीज पु बांगेन चिन गतेस मगर नति दिर मना ओदे सग इनिशिएटिव चि खाशिक लेन मा मेदे गति लद्दाख सुनोस की स्की एंड बोर्ड एसोसिएशन जर खानु नि जाशी जाशी हलका रिक बात तखोस कोनता यन कन पु मगर दिया मास लेवल यंग जब नाम सुपिंग गति एडमिनिस्ट्रेशन यूं यूं गवर्नमेंट यूं यूं ओ बस ओदे यूं नकतो फिर चि सचिन जे बना गतेस हम तो गते बिल्कुल ओलंपिक की चीसक तैयार बायन चिंजू
1: ओ दिल लेवल सपंगा
0: तो दिल लेवल बायन चिंजू चल बना अति देखा दरे द्रास साइड ला गवर्नमेंट इस सैंक्शन चिपास हो गया स्की दे स्की पाम लिफ्टिंग चांचिक ये गंडोला वंडोला चांचिक स्की तमी ट्रेक रिक्शा हो गया छाना ओदोनी का दरे दरे चौक दरम अभी प्रोजेक्ट सबमिट सों से पास सों से या छाना ओदोन संदान न का तो फिर थोड़ा बहुत हल्का सा बोर्ड सचिन मगर मास ले वाली का फिर भी आंसर चाहिए नाम सुपे गवर्नमेंट खोरेस सो एनुअल सों से जगह ची का दी इवेंट पर यहाँ जगह ची का दी इवेंट पर 3-4 जगह ची के इवेंट अलग अलग छाना ओदो तो छाना का तो माना फिर माना मिछे सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यूथ संग अट्रैक्ट सचिन सर प्लस फिस्ताना मी फ्यांग आता दुम्बा देना छत घा गाची गाची क्लब पुस या गाची एसोसिएशन पुस गाचास फिस्ताना क्यों मांग अचानक देना प्रॉब्लम पूछ छत बिन की क्यों से नगा होटल ले जाओ चाहे बना हीटिंग वीटिंग सिस्टम सही हो मोहम्मद गाती देर छाना होटल चिकनी शी होंदो ना उदो बुग होंदो या छाना का तो देख एकोमोडेशन इश्यू छे रुगुल्ला देख गवर्नमेंट इज अगर पहला ना एडवांस प्लान शो से दी टाइम पे आते दी दी इवेंट पे बच्चन जर ना का तो उदो छचा जो है जैसे खून समर फेस्टिवल वेस्टिवल में बात है जो दे तो रुगुल्ला उदो तो इवेंट चीज ना का तो मन अर्धम छचन में हफ्ता रही
1: बख्शीश बख्शीश कैसा शो बख्शीश जो छना जो साहब जो एरियस फेस्पा वैसे मूल संगता में एडवेंचर स्पोर्ट्स स्कूल ला तू स्पोर्ट आगे तो मम्मी इजाजत हम लोग जो बख्शीश कैसा जो मम्मी जो कैसा छना लजुक पे कहीं ना
0: तो आती देना जरने का तो आती जग बजग वक्स पुदी तो शुरू जो कि चामशिक आती युद्ध युद्ध और दोन सक अलग अलग चीज सुनिए अलग अलग जगह न्यंग मुनसलिक मामलो दुख जाए देखिए आती अतामन लंग इंजाए कि रांसुसे फ्रून गा का शोक खास कर खेलकूद यंग जबरदस्ती मबा चिया मबा तरंगते समेत कि यार ने प्रूफ साख सिल्वा मिंदु तो कोई शोक पु स्पोर्ट्स में योद्धा का तो ओदे का सपोर्ट बार रुचिन चार बना गवर्नमेंट इस दरे स्पोर्ट्स कोटा जाक्सोत अलग कोई फिर रिजर्व जाक्सोत जैसे गति एलसी फिर 4% जाक्सोत ना का तो जैसे स्पोर्ट्स पानी फिर 4% सीट रिजर्व जाक्सोत जो है ओदे स्पोर्ट्स बगैर यहां सो छांग यहां चमेन लिहाजा नीद यना अतामान लाचाम शिंग अति दी का प्रूफ बस भी चोद या जवान बुझान युद सगा स्पोर्ट्स यंग मामू मुनसलिक छचमा ना जरूरी दुख बनिस्बते तना डिप्रेशन ना चिया सों से फ्रून ला अलग अलग खराब गलत अनासिरों ने छे संग दी खेल कूद यंग मामू जुक्स ना मिया बढ़िया हैं जो या खास कर एडवेंचर स्पोर्ट्स मना इंसानी जिंदगी यंग चीज लोपशिन खुआ गचुक शिया 7 दिन या 10 दिन या 20 दिन जेक खाना गंगरिंग एम्बो गचु अधुक पे यंग चीन जरे अधुन सक लोपशिन जो या
1: शुक्रिया जो बख्शेस छना यहाँ सच्ची करा यारी रिंथोस चंतुस कुना तुस तांसे आकाशवाणी स्टडीज कर चले आरा जी सर मुझे जरे जो या सामाले
0: बख्शेस जो सलाम अलैकुम यंता यंती चाम शिमिंग यंत खाने उतना उधर सगं ये तरफ ना सलाम ना जुझ जुए
1: बख्शेस जो शुक्रिया देना बो दिदिंग स्पोर्ट्स यानी यहाँ स्पार्स ने प्रोग्राम पथमा थोन खुदा रन्ना यूं मितुसुने अंतर ना तो खंड दिमाग पंगा आशा जबुत इजिन जो खुदा नर सामाने फकरे

0: मेनुमेकांच्या आकाशवाणी करगिल कनजरन्युत
1: प्रीमियम मिन्से बोनस पिखिमु गलत जनते सरकारी नौकरी बेन पीएसयू या यूनिवर्सिटी यूनियनुक लस बादना यंतस स्टोंग निशी कना 50 लाख सपे पॉलिसी लेन मेंगेन चाइन सुरक्षा संतोष सुमंगल दोना युगल सुरक्षा चोक ट्रस्टेड प्लान निंगेम बो थोप चाइन रिसिक कवर प्रपोजल एक्सेप्ट छाना एटीसी नल जोस टैक्स रिबेट दोना रिवाइवल फैसिलिटी निदिरिंग खुरंग स्क्योत पजत रंग निमुर लेउत खान पोस्ट ऑफिस निका या कॉल बाजत 01982257534 का लद्दाख पोस्टल डिवीजन डिपार्टमेंट छोसना मिमंसी फंतोक्स मिंगना

0: वक्त जायजा लिया जा रहा है। नरियासना नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नजीर अहमद खान गुरेजी की तवज्जो दिलाव नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि 18 किलोमीटर लंबे ब्रनोई जवडारा लिंक रोड पर पीएमजीएसवाई के तहत काम जल्द जल्द शुरू किए जाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुतल्लिका महकमों के साथ मुअस्सर तरीके से राबते में है ताकि इस प्रोजेक्ट में हायल तमाम रुकावटों को दूर किया जा सके। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज कानून साज असेंबली में राजेश्वर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत बन्नी हलके में सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए मरहलवार तरीके पर लाजमी इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बन्नी हल्के में 50 तिबी इदारे काम कर रहे हैं। वजीर मौसूफा ने निजामुद्दीन भट्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बांडीपोरा हल्के में इस वक्त 30 तिबी इदारे काम कर रहे हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी शामिल है। ज़राअत और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने मियां महर अली के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत दीही इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तमाम मुस्तहिकीन को लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कानून साज असेंबली ने आज जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने से मुतल्लिक करारदाद को मंजूरी दी। ये करारदाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेश की थी और ऐवान ने बहस के बाद इसे 100 वोट के जरिए पास किया। बीजेपी के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की और उन्होंने वोटिंग से पहले ऐवान से वॉकआउट किया। करारदाद को लाजमी कार्रवाई के लिए मरकजी सरकार को भेज दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कानून साज असेंबली में रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक करारदाद का खैर मकदम किया है। पार्टी के सूबाई सदूर शौकत अहमद मीर और रतनलाल गुप्ता ने मुश्तरिका बयान में कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात जज्बात और उमंगों के ऐन मुताबिक रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। आज कुपवाड़ा के करना के टीटवाल सिवारी इलाके में उस वक्त सड़क के एक हादसे में 5 अफराद जांबाक और 6 दीगर जख्मी हुए जब सवारियों से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसा पेश आते ही मकामी लोगों इंतजामिया और पुलिस ने बचाव कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे में कीमती इंसानी जानों के जिया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों के साथ दिल्ली ताजियत और हमदर्दी जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वह जख्मियों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात मयसर रखें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी टंगडार कुपवाड़ा में पेश आए हादसे पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए मुतासरा कुंभों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वह हर जख्मी को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत बहम रखें। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठौर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने भी सिमारी करना में पेश आए सड़क हादसे में इंसानी जानों के जिया पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वजीर अजम के जनसेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजे हो जाती है। सरकार विकसित भारत 2047 का हदफ हासिल करने के लिए मुसलसल काम करती रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर में भी तरक्की की नई बुलंदियां छुई जा रही हैं। खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के सिलसिले में समाप्त करें स्वच्छ भारत मिशन से मुतल्लिक ये रिपोर्ट।
1: भारत सरकार ने 2014 में गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया। इस मुहिम का बुनियादी मकसद मुल्क में सफाई को फरोग देना, खुले में रफाए हाजत का खात्मा करना और लोगों में हिफ्जानी सेहत और सफाई के हवाले से शऊर पैदा करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुल्क भर में बैतुल खुला की तामीर, सफाई की बेहतर सहूलियात और कचरे के मुनासिब इंतजाम पर तवज्जो दी गई। इसके साथ साथ गीले और खुश्क कचरे को अलग करना, कचरे को मुकर्रर जगह पर ठिकाने लगाना, रिसाइकलिंग और अवामी मकामात को साफ रखना भी इस मुहिम के अहम हिस्से हैं। इस मिशन ने ये पैगाम भी आम किया कि सफाई सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी का फर्ज है। इस जज्बे को स्वच्छता ही सेवा जैसे पैगामात के जरिए मजीद तकवियत दी गई है। हम अपने रोजमर्रा के मामूलात में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर इस मिशन में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कचरा सड़कों पर न फेंकें, सफाई का खास ख्याल रखें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए मुख्तार अहमद शाह के साथ मैं महमूद अहमद खान।
0: श्रीनगर में आज हिन्दी अदब में तंजो मिजा और समाजी तब्दीली में हिन्दी के रोल पर 3 रोजा चिंतन शिविर का आगाज हुआ। व्यंग यात्रा और जम्मू कश्मीर हिंदी एकेडमी के इश्तराक से मुनक्कद

इस प्रोग्राम में मुल्क भर से अदीब और तंज निगार शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही इजलास की सदारत डॉक्टर प्रेम जन्मेजय ने की। उन्होंने कहा कि यह चिंतन शिविर कश्मीर में हिंदी तंज के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। आज के इजलास में रमेश साइनी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुख्तलिफ इजलासों में हिंदी तंज के असरी मौजूद, नई नस्ल की तख्लीकी आवाजों और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू और तंजिया तख्लीकात पेश की गई। प्रोग्राम में कई दीगर अदबी शख्सियात, जिनमें डॉक्टर रफीक मसूदी, केवल कुमार केवल और आशा कुंद्रा भी शामिल हैं, ने शिरकत की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी मोबाइल एप्लीकेशन, न्यूज ऑन एआईआर, वेव्स, ओटीटी प्लेटफार्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharti.gov.in के अलावा डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबिस्ता या मंजूरशुदा नहीं है। ओमाज अजीम इनकलाबी शख्सियत शहीद भगत सिंह को का 119वां यौम पैदाइश मना रही है। भगत सिंह 1907 में आज ही के दिन पंजाब के जिला लियालपुर, जो अब पाकिस्तान में वाका है, के गांव बंगा में पैदा हुए थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनके यौम पैदाइश पर खराज तहसीन पेश करते हुए अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि भगत सिंह ने बेमिसाल हौसले और बहादुरी के जरिए आजादी की तहरीक में नई रूह फूंक दी थी। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद भगत सिंह को उनके जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने भगत सिंह को देश का एक बहादुर सपूत करार दिया है, जिन्होंने मादरे वतन की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज मारूफ गुलकारा और भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्मदिन है। इस सिलसिले में वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने उनकी जन्म जयंती के मौके पर उन्हें खराज पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी मुनफरिद आवाज और गायकी के जरिए पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लता मंगेशकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत अदा किया है। एलजी ने कहा कि बुलबुल हिंद के नाम से मशहूर लता मंगेशकर की सुरीली और पुरसोज आवाज ने मौसीकी की दुनिया पर गहरा असर छोड़ा है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की जानिब से आज डलगेट श्रीनगर के टेक्स स्टैंड में जन भागीदारी के तहत स्वच्छ भारत अभियान के बारे में एक सिकिट पेश किया गया। गुलाम रसूल आखून की हिदायतकारी में आकाशवाणी के फनकारों ने सफाई सुथराई की अहमियत के बारे में आम लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। बाद में आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबरा गुलाम रसूल आखून ने न्यूज रूम के साथ बात करते हुए कहा,
1: आज आकाशवाणी श्रीनगर की तरफ से डलगेट इलाके में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक सिकट पेश किया गया लोगों के सामने और लोगों ने उसको काफी सराहा। वादी के मुख्तलिफ फनकारों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने ड्रामा के जरिए स्वच्छ भारत अभियान को पेश किया कि स्वच्छ भारत अभियान किसे कहते हैं और सफाई की क्या अहमियत है। हमें आसपास के माहौल को साफ रखना चाहिए और इसके साथ साथ अपने घर को साफ रखना चाहिए और यही मैसेज उन्होंने दी कि जो सफाई है वो नस्ब ईमान है।
0: इस दौरान आकाशवाणी के अमले और मकामी लोगों ने मिलकर इलाके की सफाई सुथराई के अमल में भी हिस्सा लिया। बुलंदपाय वली कामिल हजरत मीर सईद याकूब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में अयामे मुतबर्रका जारी हैं। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाका सनवार श्रीनगर में हर दिन नमाज असर से नमाज मगरिब तक खदमातुल मुअज्जमात दुरूद अज़कार और नातो मनाजात की मजालिस का अहतमाम होता है। बुलंदपाया वली कामिल हजरत मीर सैयद मोहम्मद मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज उनके आस्थान आलिया वाका छतबल में दुरूद अज़कार और खदमातुल मुअज्जमात की मजलिस आरास्ता हुई। इस दौरान वहां उलमा ने मीर सैयद मोहम्मद मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी कमालात पर रोशनी डाली। बांडीपोरा के लहरवालपोरा में पीएम श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में आज बैगलेस डे मनाया गया। इस मौके पर चार सरकारी स्कूलों के 400 से ज्यादा तलबा व असातिज़ा ने क्वायर तकरीरी नात और तिलावत के मुकाबलों में हिस्सा लिया। तलबा ने मुश्तरका दस्तरखान का एहतमाम करते हुए टीम वर्क कयादत और अमली जिंदगी की महारतों का मुजाहरा किया। आज रैबीज का आलमी दिन है। आज के दिन समाज में रैबी से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने और इस पर काबू पाने के लिए दरकार लाजमी एहतियाती तदाबीर को उजागर किया जाता है। रैबीज आमतौर से कुत्तों के

0: काटने से लग जाती है। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट और मुतहिदा उलमाए अहले सुन्नत जम्मू कश्मीर ने ब्रेन श्रीनगर के एक नामवर दानिश्वर और मुअल्लिम अब्दुस सलाम बट की वफात पर रंजोगम का इजहार किया है। बैंक यूनियंस के यूनाइटेड फोरम ने ऐलान किया है कि बैंकों की कौमी सतह की हड़ताल जो आज से शुरू होने वाली थी अब मुअख्खर कर दी गई है। यह फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के साथ हुए एक मुआहदे के बाद लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट बाज यूपीआई लेन देन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन चार्जेस का इतलाक अगले महीने की 15 तारीख से होना है। 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई अदायगी पर एमडीआर नाफिज किए जाने को चैलेंज करने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मामला कानूनी एतबार से कम लेकिन तकनीकी लिहाज से ज्यादा अहम है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 6:23 और गुरू आफ्ताब शाम 6:18 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए कानून साजिया में हुई आज की कार्रवाई का खुलासा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कानून साज असेंबली में आज की कार्रवाई का खुलासा लेकर हम हाजिर। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का आज का इजलास इंतहाई हंगामा खैज रहा। असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही हिजब इख्तिलाफ ने ऐवान में शोर गुल बपा कर दिया। दरअसल दो दिन कबल यूटी के वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने ऐवान में जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली से मुतलिक एक रेजोल्यूशन दाखिल किया था जिस पर स्पीकर ने बारी बारी ऐवान के तमाम मुंतखब मेंबरान के तासुरात तलब किए। इस सिलसिले में जो ही हिजब इख्तदार कोई मेंबर अपने तासुरात बयान करने के लिए खड़ा हो जाता हिजब इख्तलाफ के मेंबरान कान पड़ी आवाज सुनाई न देने वाला शोरगुल बपा कर देते और इस दौरान उनका एक ही मुतालबा रहा कि रेजोल्यूशन को वापस लो। इस हंगामे के दौरान हिजब इख्तलाफ और हिजब इख्तदार के मेंबरान के दरमियान इंतहाई परले दर्जे की नोकझोंक भी देखने को मिली। मेंबरान एक दूसरे के सामने आए जिसको बांप कर ऐवान में मौजूद मार्शल हरकत में आए और सूरतहाल को काबू से बाहर जाने न दिया। बीजेपी के बगैर हिजब इख्तलाफ से वाबस्ता तमाम मेंबरान ने जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली से मुतलिक रेजोल्यूशन की हिमायत की। बीजेपी ने भी एक तरह से मजकूरा रेजोल्यूशन की हिमायत ही की मगर उन्हें रेजोल्यूशन में इस्तेमाल किए गए मतन से इख्तलाफ है क्योंकि वो 5 अगस्त 2019 को मुल्क की पार्लियामेंट की तरफ से की गई कार्रवाई पर किए गए एतराज को गलत बताते हैं। ऐवान की कार्रवाई के आगाज में यूटी के तरक्की और बहबूदी से मुतलिक कई मामलात पर बात हुई और सवालात भी उठाए गए जिनके जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हेल्थ केयर से मुतलिक हुकूमत काफी संजीदा है। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर में 800 टन फुजला रोजाना ठिकाने लगाने के लिए हुकूमत के पास 361 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो इस फुजले के बड़े अंबार के लिए 25 साल का इहाता करेगा और अगले 24 महीने में पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने हाउस को ये भी इतला दी कि झील डल में अंदरूनी आबी सड़कें 10 किलोमीटर दूरी तक साफ की गई हैं और ये कि मैकेनिकल बुनियादों पर घास फूस को साफ करने के लिए 30 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट्स जेर तामीर है जो अगले 2 सालों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। मेडिकल एजुकेशन की मिनिस्टर सकीना इतू ने ऐवान को बताया कि बनी असेंबली हल्का इंतखाब में सेहत आमा के 50 मराकज काम कर रहे हैं जिनमें से 19 किराए के मकानों में हैं। उन्होंने कहा कि 335 मेडिकल अफसरान को भी तैनात किया गया है। उनके मुताबिक बांडीपुरा में 31 हेल्थ केयर सेंटर सही तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की सिफारिश पर 446 नॉन गेजेटेड आसामियों की भर्ती के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से रुजू किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ऐवान को बताया कि पीएमजीएसवाई सड़क की वक्त पर तकमील के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं।

0: जिसमें 47.5 करोड़ रुपए दरकार हैं। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि ST2 सर्टिफिकेशन, जो पहाड़ी नस्ल से वाबस्ता अफराद को इजरा की जानी मकसूद है, के बारे में जमीनी हकाइक की जांच पड़ताल के बाद ही एक ठोस कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा ऐवान में कई दूसरे मामलों से मुतलिक बिल पेश किए गए, जिन्हें मामूली बहसो मुबाहिसे के बाद पास किया गया। बाद दोपहर जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो तीखी नोकझोंक, शोरगुल, बहसो तकरार और जबरदस्त हंगामा आरायू में ऐवान की अक्सरियत ने जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बहाली से मुतलिक रेजोल्यूशन पास किया। अगरचे दौरान बहस हिज्ब इख्तिलाफ की तरफ से इंतहाई नाजेबा और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, मगर हिज्ब इख्तदार के बेशतर मेम्बरान ने इंतहाई सब्र तहम्मुल से काम लेकर ऐवान के तकद्दस को पामाल होने नहीं दिया। ये थी कानून साज असेंबली में आज की कार्रवाई का खुलासा। हमें दीजिए इजाजत, शब खैर।
1: उर्दू में खबरें और तबसरा आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे थे। मीडियो में पर हम आकाशवाणी कारगिल साहब से मुखातिब हैं। शब के ठीक 8 बजे हैं, पेश खिदमत है फिल्मी गिनतू पर हमने प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए

जय हिंद। प्रोग्राम सुनने वाले सभी भौजी भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हमारा प्यार बरादा। भौजी भाइयों, प्रोग्राम का आगाज करते हैं त्रिशूल फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और यशोदास ने। साहिर खिल के इस गीत को संगीत दिया है खयाम ने।

0: त्रिशूल फिल्म से अभी समाप्त कर रहे थे। आवाजें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और यशोदास की। गीतकार थे साहिर और संगीतकार खयाम। प्रोग्राम की अगली पेशकश साजन की बाहों में फिल्म से गीत, जिसके लिए कुमार शानू का साथ दिया है साधना सरगम ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आवाजें थी कुमार शानू और साधना सरगम की। फिल्मी गीत अब आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। प्रोग्राम है फौजी भाइयों के लिए

फौजी भाइयों, ये थे शब्बीर कुमार लाल का एक निक। फिल्म का नाम था कुल्ली। गीत लिखा था संतोष आनंद ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत हमने नगीना फिल्म से लिया है आनंद बख्श के लिखे। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गायक कलाकार है मोहम्मद अजीज़।

दिल का क्या कसूर फिल्म से आप गीत सुन रहे थे। आवाजें थी कुमार शानू और हर्षा भोसले की। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए क्रांति फिल्म से गीत, जिसके लिए लता मंगेशकर का साथ दिया है नितिन मुकेश ने।

नितिन मुकेश और राधा मंगेशकर के गाए क्रांति फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम का खत्म होता है। कल तक हम इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को

0: लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने यह बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हों। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा।

0: और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
4: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
3: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
5: So if you want to make more export,
6: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
5: 6% इट कम्स टू 10% वन ईयर बिफोर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
7: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
8: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक

0: इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया, ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
1: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
0: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
2: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई, साथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई।
0: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधित संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree.

0: राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: जनाब चौहान ने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर ये खदशात थे कि अनिनों के असरात से काश्तकारी का रकबा कम हो सकता है और बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ताहम वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क ने खरीफ की फसलों की बुआई के तकरीबन तमाम मुकर्रा अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जनाब चौहान ने मुल्क भर में खादों की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म का यादा किया। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद मुनासिब मकदार में खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ ने खाद के मुतवाजन इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया ताकि जमीन की जरखेजी को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि खाद का इस्तेमाल सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मिट्टी की जरखेजी से मुतालिक कार्ड में पेश की गई सिफारिशात के मुताबिक किया जाए और खासतौर पर मिट्टी में मौजूद गजाई अज्जा की कमी को दूर किया जाए। हुकूमत ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का आगाज किया। ये पोर्टल बीमा पॉलिसी जारी करने से मुतालिक मामलात दावों निगरानी और रिपोर्टिंग को आसान बनाते हुए मवेशियों के लिए एक ही जगह मरबूत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मवेशी परवरी और डेयरी के महकमे की मवेशियों की बीमा स्कीम के तहत बीमा किए गए मवेशियों के लिए यह मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए माही परवरी मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का मकसद मवेशियों की बीमा खिदमात को ज्यादा शफाफ मुअसर काबिल रसाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाना है। साथ ही मवेशियों के हामिल किसानों और उनकी गुजर बसर की पायदारी को मदद करने की खातिर जोखिम से मुतालिक तहफ्फुज को तकवीत देना है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: पशुधन बीमा पोर्टल मुल्क भर में मवेशियों के बीमा प्रोग्रामों में खिदमात की बेहतर फराहमी में तआवुन करते हुए बेहतर तालमेल बरवक्त निगरानी और डेटा पर मबनी इंतजाम में मदद करेगा। जनाब सिंह ने कहा कि यह पोर्टल किसानों की गुजर बसर के तहफ्फुज की जानिब अहम कदम है और किसान की आमदनी बढ़ाने उसके ज़रई असासों और मवेशियों के तहफ्फुज और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए की तकमील करता है। जनाब राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए किसान अब अपनी बीमा दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। वहीं इस पूरे अमल की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
2: पशुधन बीमा पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 मुकामी जबानों में भी दस्तियाब होगा, जिससे मवेशियों के मालिक किसान उनकी अपनी जबान में मालूमात और खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि इमदाद बाहमी की वजारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है।
4: भारत के इमदाद बाहमी के शोबे में 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटियां शामिल हैं, जिनके 32 करोड़ से ज्यादा मेंबरान हैं। ये सोसाइटियां कर्ज, डेयरी, चीनी, माही परवरी, मकानात और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और मुल्क के देही इलाकों के तकरीबन 98% हिस्से का अहाता करती हैं। साल 2021 तक इमदाद बाहमी की खातिर अलग से कोई वजारत नहीं थी। इसकी जिम्मेदारी वजारत ज़राअत के पास थी, जो मुख्तलिफ महकमों और रियासतों में तकसीम थी, जबकि बेशतर बुनियादी सोसाइटियां अब भी कागजों पर अपने रिकॉर्ड रखती थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में जुलाई 2021 में इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील अमल में आई। इस वजारत ने मुल्क में अपनी नौईयत का पहला कौमी कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया, ताकि मुल्क में मौजूद इमदाद बाहमी के इदारों का दुरुस्त रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। इसके अलावा बैन रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और बुनियादी जरई कर्ज सोसाइटीज पीएसीज को कंप्यूटराइज करने के लिए माली मदद फराहम की गई। वजारत ने کوآپریٹو بینکوں کو فوائد کی براہ راست منتقلی DBT کے نظام سے بھی منسلک کیا. 2024 میں نئی دلی میں منعقدہ عالمی کوآپریٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے سہکار سے سمردھی کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ یہ لاکھوں

0: 잡히 돼 거의 다 갔고
1: 그것도
0: 마음 없지
1: 민성 전 속에서 봤어.
0: 너무 마음 없잖아. 자네들 전체 로직 능이 있으면 그거 대자 얘네들 온 사고 대자는 잡진 속. 너 아메리카나 거나 없진 속 마드리 자반으로 디가들이 마드리 자반 아디 사스가 돌아
1: 파스카 다 파스카 들었다
0: 가서. 야들 겹나 액티사디 자반 액티사비 자반 저번에 나타 나타 소사이티 안 오고 나타 미유리는 독 보나 나타 양스가 직 많아 하듯 에라다든 yani an basa ngate sabet
1: ngate kharkhor pano ngati ajono ngati daso to nizga za tiska chukolen duin sba sba
0: chana chi chana zaman am tor par di madri zaban buzer madri zaban hi yani di faskati daira man mahdud hino
1: na kam
0: sum kam do dialogue surat yanuk mana kho kam yondu de gana ngate diskat yani stap pi skat puna de daira na char
1: char char go
0: chana do do sok skat chil sap par go diskat पूल स्टेप्स नता फनके युमर गोस फनके युम मीना जिस मिसाल तौर पर नते सनाते देर नाना तो नते उर्दू से दिया मन पूर दुनिया ते गलता ना तो
1: अंग्रेजी
0: दो मात्र गैप नसा बे छाना दो इक्तिसा इक्तिसाबी स्कत सुम यानी गैप नसा पी स्कत सुम दे गन सुम रे सिंह आता छनो तहरीरी
1: तहरीरी
0: बशस ब्रिसे यानी नती ब्रिन स्ट्रोल चीन सुम दुनिया ते आता दुनिया ते गनते मियोली के गलता गलता ना तो तहजीब मन मामो इतन कम से कम दुनिया ते नुक देन ने तहजीब जिबजी मन मशहूर इतने
1: बशस
0: ये जो है ना इंडस फेलिजरे ये जो हवांग हो जरे चीनी सिविलाइजेशन
1: बशस
0: ये जो दोनों टिक्रिस एंटीफ्रेटिस है नहीं
1: बराबर
0: यानी मेसोपोटामिया जब
1: इतने बशस
0: ये जो दोनों चोज लाग ये जो दी सिविलाइजेशन उनका में अलता ना तो सिविलाइजेशन चेंज रहने से बना कौन अनु कौन महज़िब इतने जो ताज़े बियाता इतने जो ब्योर्चा इतने जो
1: クリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリムソンマンスクリム
0: 망모
1: 다 로반치잖아
0: 로스톤
1: 팔란 죽잖아
0: 자네들 인더스 밸리 있는 자네 하와호에 있는 자에 되게 시비리테이션 아니네 로만 시비리제이션 아니네 데스 같은 덕선 망모 망만족
1: 막셔스
0: 아무슨 자네 어디 대리리 자반 보여 진지 자반은 같은 돈이야 봐 يعني من الدنيا تلقى لي ميولك تنزل يعني شيس يوتنا تدش شيس يوتنا سب مينا جي فاسكاتي محدود دائرين لبين سي دي دنيا تقام يوت بيدي ألوم بنا شيس بو أتان سب بي زريك شجين سو أتان تهريري زبان
1: بخشش
0: كانت دقان مانا أتان إشارتي زبان ديس إشارتي زبان أتان لغردة خردس كات لغردة خردس كات بو ديو انسوك مانا يونورسل كات يونورسل زبان مانا ساقا قويس كات
1: ساقا قويس كات بخشش Kuan yang shes yut pa kachan minzu, chichi la degree yut pa kachan minzu. Mana wast yut inzu kaya, phal phal
0: maa gara. Insan chigiz, insan chigiz. Mi chigiz, mi chigiz aya shara bala nako chutuk.
1: Chutuk, chutuk.
0: Yani dao cha minzu. Mi chigiz janwar chigiz.
1: Norbalang,
0: yolzong chigiz. Aya shara bala nako chichinzu. Misal chito par ngatez, shmuet da shmuet. Shmuet siya shmuet, anash mokbala niska kere ngatez, shol tansi. Wendu.
1: Chan esharati zaban pungata mimang sir sapotsa min mamana gamal sa chike na ata dyun sok.
0: Chalo ma ata mana dunya tika diu chik skas na dunya tika ngatel tana to skas na dukta reban UNO esabika yani stong dun na rgyana chubdun. Aha. 7117.
1: Melkhaj.
0: Yani diu chik mi miskat yani lokso miskat duk don yanu na mana saga gueskat puin suk di
1: اشارتي
0: لوسو
1: لوسو لوسو بازو جوزيكا ناتادو